0: और उनके लिए भी जो उन महाजरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ फरमा और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना और हसद न पैदा होने दे। ऐ हमारे परवरदिगार तू बड़ा शफकत करने वाला मेहरबान है।
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا

अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग हुई तो उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से भी मदद न मिलेगी।

0: जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सुलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता। खुदा तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है।
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

0: खुदा उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम है।
1: या अय्युहल्लज़ीना आमनू

0: और जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं तो उधर भाग जाते हैं और तुम्हें खड़े का खड़ा छोड़ जाते हैं। कह दो कि जो चीज खुदा के यहाँ है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और खुदा सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون।
0: ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अज़राहे निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक खुदा के पैगंबर हैं और खुदा जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो, लेकिन खुदा जाहिर किए देता है कि मुनाफिक दिल से एतकाद न रखने के लिहाज से झूठे हैं।

0: उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को राह खुदा से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं।
1: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون।
0: ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई सो अब ये समझते ही नहीं।
1: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم।

0: वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देखता है।
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير।
0: उसी ने आसमानों और जमीन को मबनी बर हिकमत पैदा किया और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी पाकीजा बनाई और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है।
1: يعني

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वॉज दैट विच विल बी।
3: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
4: Listen Learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.2 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: Assalamu alaikum. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया and this is Umay Malone from Faculty of Languages and Literature. Today we are going to discuss modern classroom and its challenges. And for this topic, we have with us our brilliant and vibrant faculty members, Ms. Taiba Binte Mahmood and Ms. Huma Rauf. Ms. Taiba Binte Mahmood के बारे में थोड़ा सा कुछ कहता चलूँ तो she has won to herself the best teacher award at university level and she has surely made the department proud. And as for Ms. Huma Rauf, she is a diligent PhD scholar and has published her valuable research in renowned journals and we welcome them both for today's session. कैसे हैं आप दोनों?
1: थैंक यू सो मच उमायमा. बिल्कुल ठीक. आप बताएं, आप कैसी हैं?
0: अल्लाह का शुक्र आपके सामने. अल्लाह का शुक्र. आप बताइए आप कैसी हैं? तैयबा आपसे शुरू करते हैं. यू हैव जस्ट वन. कंग्रेचुलेशंस ऑन योर विन.
1: थैंक यू सो मच.
0: एंड हाउ डज इट फील, यू नो, यूनिवर्सिटी लेवल पे बेस्ट टीचर का अवार्ड बैग करना? इट्स अ बिग बिग विन.
1: इट इज डेफिनेटली अ ह्यूज विन, अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली. और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल ऑनेस्टली. ठीक है, मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी. और मजे की बात आपको बताऊँ कि व्हेन आई रिसीव द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इन माई माइंड आई थॉट दैट आई हैव वॉन इट एट द फैकल्टी लेवल. तो वो कोई आधा दिन गुजरने के बाद आई रेड द ईमेल अगेन कहीं खुशी में कि अच्छा दोबारा से पढ़ती हूँ. एंड देन आई रेड द थिंग दैट यूनिवर्सिटी लेवल. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस इज
0: दिस वुड बी अ प्लेजेंट शॉक.
1: एग्जैक्टली. सो दैट वाज रियली गुड, यू नो. ऑब्वियसली इट्स अ वंडरफुल फीलिंग एंड आई मस्ट से दैट it feels great to be acknowledged. Nah, if you are lovely. Putting in effort, so obviously it's like a reward, a
0: definitely,
1: true reward.
0: Definitely, many congratulations for that. तो फिर इसी से आपसे ही शुरू करते हैं कि बेस्ट टीचर का अवार्ड आपने विन तो किया है, अब आप ये भी बताइए कि बिगेस्ट चैलेंज आपको मॉडर्न क्लासरूम में क्या लगता है?
1: अच्छा, वाकई ऑनेस्टली आई थिंक दैट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी टॉक्ड अबाउट, बिकॉज अब टीचिंग में ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 6 years नाउ दैट आई एम विद UCP. और हर दफ़ा जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो ईच यू नो सेशन सीम्स टू बी अ न्यू चैलेंज, अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस टीचर्स एज वेल. जिस तरह से हमने पिछले सेमेस्टर को पढ़ाया हो, अगर आप सेम सब्जेक्ट भी बात कर लें तो आई डोंट थिंक कि आप सेम मेथडोलॉजी सेम कॉन्टेंट को आप रिपीट कर सकते हैं. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस वाइल टीचिंग टूडेज अंडर ग्रेजुएट क्लास इज दैट इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट लेवल एंड देयर अटेंशन स्पैन इज सो लो. दे आर हुक टू देयर फोन, सो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट कि आप उनको उनके मोबाइल फोन से हटा के अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें.
0: आई डू हेट कॉलिंग टैगिंग देम विद जेन जी टाइटल, बट डेफिनेटली आई कैन नॉट डिनाई इट. अब वो जेन जी भी जिधर हम लगा दें तो साथ ही वो आ जाता है कि आपका अटेंशन स्पैन इज रियली शॉर्ट. तो मैं आपकी इस बात को सेकंड करते हुए ये कहती हूँ, फिर हम क्या कैसे एज अ टीचर हाउ कैन वी यू नो पुश देम और मोटिवेट देम to get into or indulge into in a pleasing way definitely to studies and all that.
1: I think Umayma, jo hamara jo problem ya root cause banti hai na, solution bhi usi mein hi dhoondna padta hai. Like I mentioned that mobile phones are becoming the root cause of all the problems, so main phir koshish ye karti hu ki kuch na kuch tarika aisa nikalun classroom ke andar jisme wo thoda bahut mobile use kar sake, just to search the meaning of words, just to google some concept. ठीक है, and now thanks to you know ChatGPT ऐसा भी अब तो मैंने classrooms में किया है, क्योंकि I know that they are going to take the easy way out, so why not give it to them, right? So अब तो मैंने एक दो assignments और ऐसी classroom discussions रखी जिसमें I give them the question कि मैं उनको कहती हूँ ये लिख के दो तुम ChatGPT को. ठीक है, और and they do that happily obviously, and then exactly the prompts वो हर कोई अपने according दे रहा होता है. So I just nudge them in that direction and I ask them कि ये इस तरह से लिख के दो and tell me. So वो ये होता है कि फिर we get a lot of you know different answers, mostly around the same themes or and exactly where I want them to be. तो फिर ये होता है कि उससे एक आप अच्छी discussion generate कर लेते हो और understanding हो जाती है.
0: This is a wonderful idea. हुमा आपकी तरफ आते हैं and I ask you the same question कि आपके नज़दीक biggest challenge क्या है classrooms के अंदर?
2: अच्छा जी, biggest challenge according to me, I would like to extend what Taiba said. She rightly mentioned that the attention span of students these days it has really decreased a lot, right? And it is very difficult for me के students जो हैं उनको class में engaged रखना and to make sure that that they participate. You see, they have been learning this language from the day one. And this is what I tell to my students as well, that from the day one, from the playgroup, aap ye language seekh rahe hain, A, B, C, D, A, B, C, D, and then moving towards grammar, ke aapko grammatical rules bataye jaate hain. But where is the application? How you to speak confidently in class, sabse bada jo ek masla aata hai, wo mere khayal mein class mein yehi aata hai, that they don't feel like speaking. And even though when they are comfortable in speaking, they are unable to speak in front of the class. So this is the biggest challenge, I think, in today's world, especially in this modern era, jahan par mobile, social media, and these are the things. Aur students se zyada, I think, hume suffer karna padta hai in a way.
3: Definitely.
2: That they are not paying attention to what we say. There was a time jab ek waqt tha, 8 to 9 hum dramas dekhte the, jisme ek ghante mein break bhi aati thi. We knew ke 10 minute ki break hai, उसके बाद हमारा ड्रामा दोबारा शुरू होगा. वो एक घंटा शॉर्ट होके YouTube पे आया, दैट्स 40 मिनट्स. और अभी भी उसमें जब 20 सेकंड्स की एड आती है तो माय किड्स दे आर ऑफ द व्यू, मामा स्किप करें इसको, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें. और उससे भी स्क्वीज होता होता अब वो रील्स पे आ गया है, राइट. सो आई थिंक जो मीडिया, सोशल मीडिया है, वो भी एक तरह से हमें ऑपरेट कर रहा है.
3: डेफिनेटली.
2: और ये चैलेंज जो है क्लासेस में हमें कंट्रोल कर रहा है, इट इज कंट्रोलिंग अस इन अ वे. एंड बिलीव यू मी, सोशल मीडिया इज योर बेस्ट फ्रेंड, एआई इज योर बेस्ट फ्रेंड इन अ वे कि फेसबुक, इंस्टा पे, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, इट्स देयर. So that's why this device has become your best friend, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग, आपके मूड्स के अकॉर्डिंग मूव कर रही है.
3: आप दोनों ने मेंशन किया, AI का मेंशन किया, आपने ChatGPT का मेंशन किया. मैं दूसरा क्वेश्चन इसी से ही पूछती हूँ, इसी से रिलेटेड है. What do you feel about this technology? What do you feel that any such technological application or apparatus that is definitely we are bound to use it, क्योंकि जिस तरह से आपने बात किया कि ये हमें कंट्रोल कर रहा है, बाकी ये कुछ भी है, इसके इस यूजेज को आप कैसे रेट करते हैं, एंड रेट इट इन द क्लास अमंग द स्टूडेंट्स, ये कैसे देखते हैं आप दोनों?
1: Humaima, if I talk about my own opinion and experience, so शुरू में तो जैसे ही जब हम, आपको पता है, एक तहलका सा मच गया था जब हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, और फिर जी वो हमें पता चला कि वो सब ने ऑब्वियसली उसको एक एक दफ़ा तो ट्राई तो ज़रूर किया हम सब ने, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी भी, ठीक है, कि जी अच्छा ये क्या चीज़ है. और बड़ा मज़ा आया जब उसने आपसे बड़े एक यू नो एक ह्यूमन बींग की तरह बातचीत की, ये इस तरह से एग्जैक्टली यू नो एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह बात उसने की. आई एम सॉरी टू से, लेकिन बेटर देन मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स इवन, ठीक है,
4: बड़ा
1: इंग्लिश में कंपैशनेट होके, ठीक है, वो पिक कर लेता है ना कि आप किस तरह का चाह रहे हो, ठीक है. सो द थिंग इज कि वो शुरू में एज टीचर्स, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ तो वो ऑनेस्टली बहुत थ्रेटनिंग था हमारे लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर आवर कोर्सेज लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर दोनों में, चूँकि आप भी लिटरेचर की हैं, सो यू नो कि वो बहुत थियोरेटिकल आंसर्स हमारे हमारी फील्ड में रिक्वायर्ड होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ. और वो हम जब बच्चों को असाइनमेंट्स दे रहे थे, हम उनको टास्क दे रहे थे जिनमें उनकी राइटिंग एंड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग वॉज रिक्वायर्ड, तो वो हमें ChatGPT से कॉपी पेस्ट, यहाँ सो मच सो दैट यू नो फुल थीसिस इवन आई हर्ड दैट दे वर कॉपीड.
3: Robotic writing.
1: Exactly. So वो जो first phase था, that was really really you know threatening. लेकिन उसके बाद फिर ये एक phase आ गया जिसमें we realized कि there is no stopping it. आप इसको वो कबूतर की तरह आप आंखें नहीं बंद कर सकते, इसके वो जो मिसाल है, ठीक है. सो वी हैड टू एम्ब्रेस इट, वी हैड टू फाइंड वेज टू लेट इट बिकम अ पार्ट ऑफ आर टीचिंग मेथडोलॉजीज एज वेल, एंड टू इनकॉर्पोरेट इन सच अ वे दैट लर्निंग कुड टेक प्लेस. तो फिर ये है कि जो लास्ट ईयर जिस तरह से गुजरा है उसके अंदर आई एम रियली ग्लैड दैट आवर फैकल्टी यू नो जम्प्ड ऑन दिस ट्रेंड एज वेल, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच इट कुड बी यूज्ड फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि आप बच्चों को इसको यूज करने से रोक नहीं सकते, सो वाई नॉट यूज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, कि बच्चे उसको यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो आपकी ही इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है.
3: अच्छा तैयबा, आई जस्ट यू नो रिक्वेस्ट कि हम इसको यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, क्योंकि हम एक म्यूजिकल ब्रेक पे जा रहे हैं और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. वी विल कैच अप.

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया और हम बात कर रहे थे मॉडर्न क्लासरूम एंड इट्स चैलेंजेस के ऊपर. और मिस तैयबा से हम सवाल कर रहे थे कि भाई हाउ हैव यू इंटीग्रेटेड AI इन योर क्लासरूम्स. मिस तैयबा इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम सुमा की तरफ आते हैं.
2: थैंक यू मायमा जी. हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब इट्स अ रियलिटी. AI इज अ रियलिटी एंड यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट, राइट? सो बेहतर यही है दैट वी नीड टू वी एज टीचर्स, वी एज यू नो एजुकेशनिस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस एज वेल, ऑफ आवर टीचिंग मेथोडोलॉजीज एज वेल. सो देर आर डिफरेंट कोर्सेज, देर आर डिफरेंट platforms that help you with that. क्योंकि देखो एक बिल्कुल नई चीज आ गई ना एकदम से, हमें भी तो नहीं पता था. तो टीचर्स ऑल्सो बिकम लर्नर्स इन दिस थिंग, ठीक है? सो अब जैसे मैं कोई कोर्स पढ़ाना शुरू करती हूँ तो उसमें मेरी हमें अब इस दफा से ये प्रायोरिटी होती है कि मैं ये देख सकूँ कि मैं इसके अंदर AI का यूज किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, मैं कौन कौन से टॉपिक्स को इसके साथ कन्वर्ज कर सकती हूँ कि वो ज्यादा यूजफुल हो सके मेरे बच्चों के लिए भी, ठीक है? बहुत सारी चीजें आपको उसमें ऑब्वियसली नई लगेंगी. थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए भी एज अ टीचर होगा कि आप भी अपनी टीचिंग मेथड्स में थोड़े से सेट हो जाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम. के लेट्स से कुछ लोग स्लाइड्स यूज करते हैं,

0: कोर्सेज थे लम्स एक्स की तरफ से. सो उसमें वो एआई का था कि दे यू नो गिव यू अ बेसिक आइडिया. और मुझे उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा दैट यू कैन यूज इट फॉर असेसमेंट एज वेल. तो जो
1: जी
0: ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट वी हैव यू नो बिग क्लासरूम
1: ओह
0: साइजेस,
1: यस
0: स्ट्रेंथ 35+ की होती है.
1: एग्जैक्टली
0: सो वो अगर हमें इस तरह से क्रिएटिव मेथड्स मिल जाएं टू असेस, वो आई थिंक कि वो तो बहुत ही अच्छी डोमेन बन जाएगी. और इसी तरह से हाउ टू यू नो डिज़ाइन योर असेसमेंट्स क्रिएटिवली, और इस तरह से कि बच्चों को एआई आप यूज़ तो करवा रहे हैं लेकिन समहाउ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है और वो उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहे हैं. सो ये वाला पार्ट आई थिंक फॉर अ टीचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
1: वेरी वैल्यूएबल इनसाइट्स सेबा, थैंक यू सो मच. हुमा आपकी तरफ आते सेम क्वेश्चन कि हाउ आर यू इंटीग्रेटिंग इट, यूजिंग इट, डू यू फाइंड इट गुड या बैड, आर यू अगेंस्ट इट, या कुछ भी ऐसे है जो आप AI के बारे में अपनी क्लासरूम्स के मतलब कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी उमायमा, व्हेन वी टॉक अबाउट AI, बट आई मस्ट से इस कि अगर हम AI को अपनी क्लास में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो एज अ टीचर वी आर गोइंग टू फेल. यू सी AI इज द न्यू वर्ल्ड एंड बीइंग अ टीचर हमें अपने आप को अपडेट करना है, एंड इफ वी डोंट अपडेट आर सेल्व्स तो देयर वुड बी अ बिग गैप बिटवीन आर स्टूडेंट्स एंड अस. एंड द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू फॉर्म अ कनेक्शन विद आर स्टूडेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. और अगर हम वही पुराने जमाने की एक ट्रेडिशनल टीचिंग को लेकर चलेंगे तो आई डोंट थिंक वी वुड बी एबल टू टीच दैम वेल. सो द गुड थिंग इज टू गो विद द फ्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल incorporate technology in your class, but as a teacher you have to intervene. ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल free hand दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी monitoring नहीं कर रहे. You need to see what they are up to, you need to see their potentials and then work on it. You see, we all got our potentials. Somebody is good in writing, somebody is good at speaking. मतलब हर बंदी की एक अपनी potential है, right? So when we talk about AI, AI is completely a new world. अब मैंने there was a research in 2019 जिसमें मैंने COVID के दौरान एक रिसर्च की थी that the challenges we faced during COVID-19 और उसमें टीचर्स के इंटरव्यू मैंने किए थे. What teachers said के टेक्नोलॉजी को यूज़ करना during COVID हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. और देखें, हमें तो हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना है ना. हम ऑनलाइन भी जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है. आफ्टर कोविड हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में. अब उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि द मैच्योर टीचर्स दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन देयर क्लासेस. वी हैव टू अडेप्ट, वी नो इट वेल, राइट? सो द गुड थिंग इज कि आप लोग अपने आप को चेंज करते रहें, आप लोग अपने आप को
1: इवॉल्व
2: करते रहे
1: फॉर
2: द बेटर फ्यूचर, फॉर आर ग्रोथ, फॉर आर स्टूडेंट्स ग्रोथ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर हेयर फॉर आर स्टूडेंट्स. वी हैव टू थिंक अबाउट आर स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड देन आर सेल्व्स. तो अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट. एंड बींग अ स्टूडेंट ऑफ PhD, आई सी माई स्टूडेंट्स एंड आई टेल देम कि जिस तरह से आप लोग बैठ के अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर टॉकिंग, वी हैव बीन इन द सेम फेज. अब जैसे आप एक स्टूडेंट की तरफ देखते हैं, वो अपनी आईज रोल करके यूं ऐसे बैठ जाता है. सो आई टेल हिम कि मुझे पता है तुम्हें जवाब नहीं पता, एंड यू आर यू नो ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ ड्रामा इन फ्रंट ऑफ मी. दीज आर द थिंग्स. और बींग अ PhD स्कॉलर, आई वुड लाइक टू से कि AI का यूज मैंने अपने थीसिस में भी किया है, बट इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे. अब जैसे अगर हम चैट GPT का इस्तेमाल अपनी क्लास में करते हैं तो गिव देम अ टॉपिक, असाइन देम अ टॉपिक, टेल देम टू गूगल दिस टॉपिक. चैट GPT पे आप ये टॉपिक लिखें, आपके पास जो भी डिटेल्स आती हैं क्रिटिकली इवेल्युएटेड एंड देन आंसर द क्वेश्चन. दैट्स द थिंग विच आई डू इन माई क्लासरूम्स. और हमारे तो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में जो हमारा कोर्स पैक है वो एक बहुत मॉडर्न फॉर्मेट पे जो है वो बना हुआ है, राइट? उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ को अप्लाई कर
1: लैंग्वेज
2: प्रैक्टिस करते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं. क्योंकि आई थिंक जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो सबसे बड़ी एक लैक है, जो एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को अंग्रेजी सिखाते तो हैं बट वी डोंट गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक वेयर दे एक्सप्लोर देमसेल्व्स. जहाँ पर उनको अपनी पोटेंशियल का पता चले, और वो उसी सूरत में है जब आप स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं. सो आई रियली लाइक दिस कोर्स पैक इन अ वे कि ये स्टूडेंट्स को चांस देता है कि दे यू नो इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स, दे प्रैक्टिकली डू इट एंड

0: then they go ahead with that thing.
1: Thank you so much for these wonderful answers. और अब इसी से ही आगे लेके चलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इससे पहले एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं with other questions. You are listening to FM 92.6 UCB की दुनिया. Stay tuned with us.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: Welcome back. You are listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya, aur hum baat kar rahe hain modern classrooms and the use of AI. अभी तक हमने बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन बिल्ड की है विद तैयबा बिनत महमूद एंड हुमा रऊफ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, और इतने लवली और वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली हैं रिगार्डिंग एआई एंड हाउ टू टेक क्लासरूम इन अ मॉडर्न सेटिंग इन अ मॉडर्न वे एंड हाउ टू मॉडर्नाइज योर सेल्फ विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी. इसके साथ मैं बिल्कुल लास्ट पे आऊँगी आप लोगों से बात करते हुए कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर दी स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर्स मदर्स ऑफ आर स्टूडेंट्स. एक बहुत रूहानियत रिलेटेड है हमारा रोल और पेशा भी. इसी के बिना पे एक इसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन है कि आप अपने क्लासरूम्स में एज कोर्स एडवाइजर्स एज बेस्ट एडवाइजर्स हाउ डू यू हेल्प योर स्टूडेंट्स इन देयर कैरेक्टर बिल्डिंग. हाउ डू यू मोटिवेट देम यू काउंसिल देम और इन वट एवर वे यू शेप योर स्टूडेंट्स. तो आप पहले आते हैं.
2: उमायमा, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इतना आइसोलेटेड क्लासरूम का माहौल हो गया है कि बच्चे उस तरह से, जो उमा ने भी बात की थी, तो आई फेल रियली कनेक्टेड टू इट कि सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्शन डेवलप हो सके. जब हम लोग खुद स्टूडेंट्स थे तो आई रिमेम्बर कि हमारे उन सब्जेक्ट्स के ज़्यादा अच्छे स्कोर्स और उनकी लर्निंग बड़ी स्ट्रांग होती थी जब हमारे वो उन टीचर्स के साथ हमारे एक अच्छा सा कनेक्शन, थोड़ा फ्रेंडली सा, जिनके साथ हम थोड़ा बॉन्ड कर सकते थे. उसके बरक्स अगर आप देखो कि वो जो टीचर्स बड़े अलूफ से रहते थे कि बस किताब उठाए आते थे, बिल्कुल ड्राई कोई बात नहीं की और यू नो वो चले गए, तो वो ना उनका सब्जेक्ट हमारा पढ़ने का दिल करता था ना उनसे हम कोई क्वेश्चंस करते थे. तो वो वाली चीज़ मैंने हमेशा चूंकि एज अ स्टूडेंट बहुत डीपली फील की थी, तो मैं सोचती होती थी कि मैं जब टीचर बनूंगी ना यू नो तो मैंने नहीं करना ऐसे. एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज ट्राई दिस. अब वो ऑब्वियसली किस हद तक होता है वो तो मेरे स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर ये होती है कि टू ब्रेक द आइस विद देम. ठीक है, और वो एक इस चीज़ में एज हमें ऑब्वियसली ये जो हमारी ड्यूटीज़ हैं एज बैच एडवाइजर्स एंड कोर्स एडवाइजर्स, तो वो चूँकि वो भी एक यू नो वो तो मैंडेटरी भी हो गया कि आपको बच्चों के साथ मीटिंग्स करनी है, आपको उनसे पूछते रहना है इफ़ दे आर फेसिंग एनी इशूज. सो आई रियलाइज दैट दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. हम जो अब मॉडर्न क्लासरूम के टीचर्स हैं वो सिर्फ टीचर्स नहीं है, वो सिर्फ फैसिलिटेटर्स नहीं है, वो उनके काउंसलर्स भी हैं. क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं एकेडमिक, उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रेड्स इस वजह से नहीं अफेक्ट हो रहे होते कि जी उन्होंने टेस्ट बुरा हो गया, मार्क्स अच्छे नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बिलीव यू मी कि बहुत ज़्यादा दिल एट टाइम्स ना हर्ट होता है ऐसे केसेस देखे कि ये छोटे छोटे ये टीनेजर्स ही हैं यू नो, और ये दे आर सफरिंग फ्राम डिप्रेशन और बिल्कुल एडवांस स्टेजेस पे होते हैं, इतने इश्यूज होते हैं. सो वो चूंकि यू नो मॉडर्न दुनिया के मॉडर्न मसाइल भी हैं हमारी एज पे, यू नो वी नेवर न्यू कि डिप्रेशन भी कोई चीज होती है. ठीक है, तो लेकिन अब इट्स वेरी रियल क्योंकि द वर्ल्ड हैज चेंज सो रैपिडली. ठीक है, राइट. तो मुझे ये लगता है कि वी शुड बी माइंडफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स बीइंग टीचर्स. और मैं अपनी क्लासेस में एक छोटा सा सेशन रखती होती हूँ थॉट ऑफ द डे के नाम से क्लास के स्टार्ट में, या अगर जैसे डबल लेक्चर्स होते हैं तो आई ट्राई के मिडल में रख लें कि वो छोटी सी एक ब्रेक भी आ जाती है यू नो पढ़ाई से. तो उसमें मैंने बच्चों को ये कहती हूँ कि इफ देयर इज एनी थिंग यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट अदर देन स्टडीज, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि ओके आई एम गोइंग टू शेयर माई गोल्ड थॉट्स विद यू. ठीक है ना, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि आई लिटरली टॉक टू देम अबाउट एनी थिंग दैट कम्स टू माई माइंड. फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया या फॉलोइंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली, या ये कि वो हम एक जो आपको पता है सोशल मीडिया पर कितनी फॉल्स परसेप्शंस होती हैं कि जी बड़ी आइडिया लाइफ चल रही है, मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि यार प्लीज डोंट गेट योर सेल्फ डिसीव्ड बाय दिस थिंग कि वो परफेक्ट स्किन है, परफेक्ट गाड़ी है, परफेक्ट यू नो लाइफ स्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं है. देन इवन यू नो जस्ट यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू देम अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग फाइनेंस. ठीक है, दिस वॉज माई सिक्स सेमेस्टर एंड आई थॉट कि दीज आर यू नो मैच्योर एंड एट सेमेस्टर से भी लाजमी आई टॉक अबाउट दिस कि यू आर गोइंग टू स्टेप इंटू प्रोफेशनल लाइफ ना हो तो आपको इन रियलिटीज ऑफ लाइफ का पता होना चाहिए. सो मुझे ये लगता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है स्टूडेंट्स को, कि आप उनके उनसे उनकी पढ़ाई के अलावा भी थोड़ी बहुत बातचीत करें ताकि बच्चे आपके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड फील करें एंड देन दे ओपन अप टू यू इफ दे हैव एनी इश्यूज. क्योंकि ऑब्वियसली हमारे वो वाली स्टेज गुजर चुकी है तो हम अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे उनको हेल्प आउट कर सकते हैं या फिर उनको सही डायरेक्शन में नाच कर सकते हैं.
1: बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि यू नो डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स द राइट, दैट्स वन ऑफ द एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट ड्यूटीज दैट वी हैव विद अस. हुमा, आप क्या कहेंगी इस बारे में?
3: मायमा, आई वुड से कि एक जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ फील करती हूँ और जिसमें मुझे बहुत अफसोस भी होता है, वो ये आजकल एक जो परसेप्शन बन गया है ना यूथ के बारे में, जैसे हम जेन जी कहते हैं तो जेन जी में हमारी एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन चुकी है. एम आई राइट?
1: बिल्कुल.
3: और जेन जी को अगर हम आज से 20 साल पहले अपने बारे में सोचें तो हम बहुत चेंज थे. Today after 20 years we have changed a lot. The world has changed a lot. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कहूँगी कि सबसे पहले हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए और सबसे पहले हमें ये चीज़ कबूल कर लेनी चाहिए कि जेन जी इज़ नॉट दैट बैड जितना हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है. जैसे अब मैंने बहुत से लोगों के कहते हुए सुना कि आजकल की बहुत तो बहुत पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो रहा है. कम ऑन, वो लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो डायरेक्शन उनको प्रोवाइड की गई है.
1: एग्जैक्टली.
3: और आजकल का जो मॉडर्न एरा है, एज तैयबा मेंशन्ड कि जो सोशल मीडिया पे हम एक आइडियलाइज्ड लाइफ देखते हैं, वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट एज वेल. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मॉरल ग्रूमिंग ऑफ अ स्टूडेंट. ओके जी, अब अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो आई थिंक मुझे अपने बचपन में किताबों में पढ़ी हुई कोई बात याद नहीं है, लेकिन मुझे जो मेरी टीचर्स ने बातें कही थी वो याद है.
1: इतनी खूबसूरत बात की है.
3: और मैंने कभी भी स्टूडेंट्स को ये कहते हुए नहीं सुना कि वो फलां किताब में ये बात लिखी हुई थी. हमारी टीचर ने हमें एक बात ये बताई थी और वो हमें आज तक याद है. सो बिलीव यू मी, एज अ टीचर हमारा एक बहुत अहम रोल है हमारी जो सोसाइटी में, हमारा एक बहुत अहम किरदार है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से निभाना है. सबसे पहले तो वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस बबल. वी नीड टू, हमें इस चीज़ को कबूल करने की ज़रूरत है कि ये हमारी यूथ है, ये हमारे ही बच्चे हैं एंड वी हैव टू शेप देम. अब जिस स्टेज पे हम लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आकर अच्छाई और बुराई का तो उनको पता है. नाउ वी नीड टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स अ वर्ल्ड जो उनकी अपनी है और उनकी अपनी दुनिया में रहते हुए उनको मॉरेलिटी की तरफ लेके आना है. दैट्स द मेन थिंग जिसपे हमें काम करने की ज़रूरत है. और ड्यूरिंग क्लासरूम आई सी मैनी स्टूडेंट्स, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके डिफरेंट चीज़ें हैं और दे आर अनएबल टू फोकस, दे आर अनएबल टू स्पीक फॉर देम सेल्व इवन. उसके लिए हमें ड्यूरिंग क्लासरूम जस्ट कीप टेलिंग देम अबाउट मोरेलिटी, अबाउट स्पिरिचुअलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दैट वी नीड टू टेल देम उनकी अपनी जो पोटेंशियल है उसके बारे में, व्हाट आर दे गुड एट. जस्ट नो देयर पोटेंशियल एंड देन टॉक अबाउट इट. दैट कैन बी आई थिंक द मेन थिंग. और एक चीज़ यहाँ पर आई वुड लाइक टू एड अ कोट ओवर हियर. कोहली वंस सेड, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम. सो दिस इज बेसिकली लुकिंग ग्लास सेल्फ है. सोशल मीडिया के दौर में हमने प्रसीव अपने आप को वैसे ही किया हुआ है जैसा कि दुनिया हमें देख रही है. द रियल सेल्फ जो है, जो हमारी एक असल बीइंग है हमारे अंदर, आई थिंक इट हैज डेड समवेयर, इट हैज डाइड समवेयर. वी नीड टू वेक दैट अप फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन इट. वी नीड टू टेल आवर स्टूडेंट्स देयर ओन आइडेंटिटी एंड देन दे वर्क ऑन देमसेल्व्स. अब जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ, आई एम बॉर्न टू बी अ टीचर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूज टू यू नो टीच माई लिटिल ब्रदर. सो अब वेन आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई रियली वैल्यू इट. तो स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताएं व्हाट इज योर पोटेंशियल, वर्क ऑन योर पोटेंशियल एंड देन यू सी दैट द वर्ल्ड इज योर्स. दैट्स द मेन थिंग एंड वी कैन डू इट बाय फॉर्मिंग यू नो इमोशनल कनेक्शन विद आवर स्टूडेंट्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट से.
1: That has been a wonderful, wonderful session and discussion with Taiba and Huma. Thank you so much for your valuable insights and time to talk about these current and relevant issues to today's world. And I hope that we could carry this essence in our classrooms as well, of counseling the students in the best of their shape and grooming them for a better tomorrow. Thank you so much. Aap sun rahe the UCP ki duniya FM 92.6 aur hum baat kar rahe the modern classroom aur AI ke bare mein. Hum in future bhi we will try to bring up more content like this and hum phir hazir honge aapke paas. Sunte rahiye UCP ki duniya FM 92.6. This is Umay Malone signing out. Take care.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: होके छलांगे मार रहे और ये
1: हम जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पे उनकी तहजीब से भी मुतासिर होते हैं तो फिर उनकी बात तहजीबी से भी बड़ा एक
0: नहीं और बड़ी डेंजरस चीज है ये मतलब वो इस आप मैं अगर चाहती मैं किसी को भी आराम से उसके सारे वॉलेट खरीद लेंगे मैं अपने कमरे में मेरी पूरी कमाई हो जानी थी अगर मैं चाहती तो किसी को भी और मैं तो ये हैरान थी कि इतना डेंजरस है ये कि लोग उतनी होश खो के सड़कों में फिर रहे हैं आराम से कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है लेकिन खैर अल्लाह मियां ने उनकी भी हिफाजत किसी अपने तरीके से की हुई थी लेकिन मैं ये देखती थी कि ये दुनिया चला रहे हैं मतलब ये यूरोप है जी रिसर्च का एपिटोम है तो ये दुनिया चला रहे हैं तो रात को इनकी हालत देखो सारों की क्या हो जाती तो वैसे ही वो देख के हंसी भी आती थी और जाहिर है ऐसी चीजें देख के फिर आपको रियलाइज होता है कि हमारे मुल्क में ठीक है मतलब हम इतने परफेक्ट नहीं है लेकिन हम इतने भी गए गुजरे नहीं है और मुझे असल में पाकिस्तान की वर्थ वहाँ जाके ही पता चली थी
1: बाहर जाके ही वैसे पाकिस्तान की वर्थ मिलती है मायरा हमने अपने जो लिसनर्स हैं उनको म्यूजिक से एंटरटेन भी करना है तो अभी हम लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हमने जिस तरह इंट्रो में कहा था कि हमने लोगों को बताना है कि उन्होंने चीजें याद किस तरह से रखनी है और आपने हमारे साथ टिप्स शेयर करनी है तो लिसनर कहीं ना जाइएगा आपका एक बहुत बड़ा मसला ब्रेक के बाद हल होने वाला है।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: जी सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूँ आपका मेज़बान अली अशरफ। और आप मायरा फारूक की मज़ेदार बातें सुन रहे थे। अभी हमने इनकी लाइफ के बारे में जाना, और जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो हमने आपसे ये कहा था कि ब्रेक पर आने से, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि चीज़ें याद किस तरह से रखनी है। तो मायरा, क्योंकि मैं ख़ुद टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ, तो हम टीचिंग में हमारे दो तीन असेसमेंट के पैरामीटर्स होते हैं। एक हम एक मेमोरी चेक कर रहे होते हैं बच्चों की, एक हम उसकी एनालिसिस चेक कर रहे होते हैं, और एप्लीकेशन चेक कर रहे होते हैं। हमारा पेपर का भी कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो चीज़ें मेमोराइज करने में आता है। एनालिसिस और एप्लीकेशन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अच्छी कर लेते हैं। तो जब हम कोई चीज़ें उनकी, क्योंकि

0: मेमोरी भी टेस्ट करनी होती है, क्योंकि कुछ चीजें उनको नॉलेज को मेमोराइज भी करना होता है. तो आप हमारे साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करें लिसनर्स के साथ कि जो उनको उनकी मेमोरी कैसे वो बेहतर कर सकते हैं.
1: बिल्कुल, मेमोरी तो मैं कहती हूँ सबसे जरूरी है. अगर आपकी मेमोरी अच्छी है ना, आपको चीजें याद है, फिर आप एनालिसिस भी तब भी कर सकते हो. अगर आपको चीज ही नहीं याद तो आप क्या एनालाइज करोगे.
0: बिल्कुल सही.
1: तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी रट्टा लगा लिया तो जी फायदा नहीं है, मैं कहती हूँ रट्टा भी, और जिनसे मैंने टेक्निक सीखी है, हैरी लोरेन है, वो भी कहता है रट्टा इज वेरी गुड, क्योंकि आपको याद तो है ना. एक दफा जब याद हो गया है फिर आप उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे ना. जब आपको याद ही नहीं तो अगला स्टेप पे पहले चले जाओ, तो फायदा क्या है फिर.
0: वो मेरे सॉरी तो, एक मेरे FSC के क्लास फेलो होते थे, तो वो कहते थे कि ये रट्टा मार लो समझ भी आ ही जाएगी, और ये हो भी जाता था अक्सर.
1: ऐसे ही हम सारे ऐसे ही बचपन में, सारों ने ऐसे ही पास किया बचपन में. तो खैर अब टेक्निक्स तो काफी हैं, लेकिन मैं जो एक इधर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक्स है. तो अब जितनी मैं डेप्थ में जा सकती हूँ रेडियो शो में मैं कोशिश करूंगी. तो वो है जी लिंक सिस्टम, ठीक है. और उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने ऑर्डर में याद करनी है कि पहले याद थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो जी ऑर्डर में कैसे याद रहे, ठीक है. तो ये सिस्टम अगर आप लगाएं ना तो कोई भी चीज़ आपको ऑर्डर में रहेगी, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1000 भी वैसे तो लोग कर लेते हैं, आप 100 भी कर लें तो हम उसी में बड़े खुश हो जाएंगे. तो वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है. वो ऐसे वर्क करता है कि जी अगर आपने कोई एक चीज़ याद करनी है ना, अब मेमोरी की एक फाउंडेशन होती है बेसिकली. अगर कोई भी चीज़ आपने याद करनी है उसकी एक फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है, वो है एसोसिएशन.
0: जी
1: ठीक है. अगर टू लर्न समथिंग न्यू यू हैव टू एसोसिएट इट विद समथिंग यू ऑलरेडी नो. किसी ऐसी चीज़ के साथ उसे लिंक करते हो, एसोसिएट करते हो, उसका ताल्लुक बनाते हो जिससे आपको ऑलरेडी आप जिस चीज को जानते हो, फिर ही वो नई मेमोरी बनती है. तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है, ये आपने अपने दिमाग में भी रखनी है थ्रू आउट दिस, ये ठीक है. और दूसरी चीज जो मैं जल्दी से बता दूंगी कि आप कि हमारा ब्रेन जो है ना वो उसकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है
0: जी,
1: वो आप बता सकते हैं वैसे क्या होगी ब्रेन की प्राइमरी लैंग्वेज, मतलब प्राइमरी जो उसकी मतलब मदर टंग कह लें ब्रेन की, क्या होगी आपके
0: जो जो हमारी मदर टंग होती है,
1: क्या क्या है आपकी?
0: पंजाबी.
1: पंजाबी. अच्छा, अब मैं एक वर्ड बोलूंगी, ठीक है. आपने वो वर्ड सुन के मुझे बताना है आपके दिमाग में क्या आता है, और फौरन से आपने बताना है, ठीक है. ब्लू हॉर्स क्या आता है, जल्दी से बताएं.
0: घोड़ा है.
1: ठीक है, किस तरह का है, थोड़ा एक्सप्लेन करें.
0: एक घोड़ा है, उसके जरा थोड़ा सा हटके घोड़ा है, और उसके जो है ना बाल थोड़े से लंबे हैं, वो जो नेक हेयर्स हैं थोड़े से लंबे हैं, वो पतला है और बड़ा खूबसूरत है.
1: ठीक है, और कलर उसका क्या है? नॉर्मल घोड़ा है. हाँ, जैसे नॉर्मल होते हैं. हाँ, अच्छा ठीक है. और लाइक रियल लाइफ घोड़ा है कि कार्टून का घोड़ा है?
0: नहीं, रियल लाइफ है.
1: ठीक है. अब आपके जब मैंने कहा ब्लू हॉर्स तो आपके दिमाग में कहीं ब्लू हॉर्स लिखा हुआ नजर आया?
0: नहीं.
1: आपको पिक्चर आई है ना?
0: पिक्चर आई.
1: तो आपके दिमाग की प्राइमरी जो जुबान है ना वो क्या है, क्या हुई फिर जो images. आपके ब्रेन ने आपको दिखाया वो आपकी इमेजेस है. हाँ, आप उसको लिख के भी उसे कह सकते हैं कि जी ब्लू हॉर्स है, वो कर लेगा याद सबको, लेकिन उसकी प्राइमरी जुबान जो है ना वो है जो हमें सबसे जल्दी समझ आती है. अगर मैं एक लेक्चर आपको पंजाबी में दूं वर्सेस वही लेक्चर एक दफा मैं दूंगी कितना समझ आएगा आपको, वर्सेस वही लेक्चर मैं आपको फ्रेंच में दूं चाहे 100 दफा भी दे दूं, उसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो एक दफा के पंजाबी वाले से भी कम होगी.
0: या इवन इंग्लिश हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम ज्यादातर उर्दू और समझ भी आ रही होती है पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी, लेकिन उर्दू फिर भी ज्यादा हमें डाइजेस्ट होती है,
1: क्योंकि वो हमारी ज्यादा लाइक सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं तो सेकंड लैंग्वेज तो है ना, या फर्स्ट हो. तो इसी तरह ब्रेन की आपकी इमेजेस है वो फॉरन वो आपको, अब मैं आपको जरा इमेजिन करें एक ब्लू कलर का घोड़ा, असल में इमेजिन करें तो आपके माइंड में एक ब्लू घोड़े की पिक्चर आ जाएगी. हालांकि जिंदगी में कभी ब्लू घोड़ा देखा आपने?
0: नहीं.
1: लेकिन आपका दिमाग आपको एक
0: घोड़े को ब्लू कर दिया मैंने.
1: हाँ, तो दिमाग आपको एक सेकंड में दिखा देगा, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही वो है. तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एसोसिएशन मेमोरी के लिए, और अगर तेजी से याद करना है तो इमेजेस. ठीक है, तो हर चीज की इमेज होनी चाहिए. ये दो बेसिक रूल्स अभी मैं आपको मोटे मोटे बता रही हूँ. अब आते हैं लिंक सिस्टम पर. वो इस तरह के अगर आपने समझे 10 पॉइंट्स याद करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि जी मैंने आपकी बीवी ने कहा है जी जरा जाके ना बाजार से ये चीजें ले आओ, 10 चीजें, तो आपको वो लिस्ट याद करनी है. फॉर एग्जांपल, तो पहली चीज उसने कहा जी आपने डबल रोटी लेके आनी है. दूसरी चीज उसने कहा जी आपने अंडे लेके आने. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जी डबल रोटी की इमेज बनानी है दिमाग में जो कि इजीली बन जाएगी, और फिर आपने एक अंडे की इमेज बनानी है. अब लिंक सिस्टम में क्या है कि जी आपने रोटी और अंडे को मिला देना है, लिंक कर देना है, और एक ऐसी इमेज बनानी है या वीडियो बनानी है मूवी जो बहुत ही अजीब हो. तो लिंक असोस, क्योंकि हम इमेज बना लेते हैं, हम लिंक बड़ा वीक बना देते हैं इन पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का, जिसकी वजह से हम अगर डबल रोटी सोच भी लेंगे ना तो वो उसका लिंक हमें भूल जाएगा, क्योंकि वो बड़ा वीक होता है. तो आपने वो उनका स्ट्रांग बनाना है. तो डबल रोटी और अंडे के बीच में अगर आपने एक इमेज बनानी हो अपने माइंड में या पेंट करनी हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप बताएं कोई अजीब सी बताएं इमेज.
0: एक सैंडविच है, उसमें से आधा अंडा निकला हुआ और आधा उसके अंदर है.
1: अच्छा, अब ये एक इमेज है तो सही, लेकिन ये अजीब नहीं है, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया जो मैंने रखा हुआ है ना वो ये होता है कि ऐसी इमेज होनी चाहिए जो रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो. ठीक है, तो अब वो इमेज ऐसी होनी चाहिए जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो ही ना कभी. तो अब वो ये हो सकती है कि मैं सोचूं, अच्छा डबल रोटी और अंडा लाना है, तो डबल रोटी है वो जो है ना वो अंडों के पीछे भाग रही है, अंडे भाग रहे हैं मुर्गी की तरह, और वो डबल रोटी पीछे भाग रही है कि मैंने ना तुम्हें पकड़ना है. ये एक इमेज बन गई मेरे दिमाग में, और ये बहुत अजीब सी है, क्योंकि रियल लाइफ में कभी भी नहीं डबल रोटी भागती हुई नजर आएगी मुझे अंडों के पीछे. ये पहली होगी. अब लिंक सिस्टम में कहेगा, अब तीसरे पे है, तीसरी चीज क्या हो सकती है भाई आप बताएं.
0: सोप.
1: सोप. अब आपने अंडों को और सोप को लिंक करना है आपने. ठीक है भाई, ऐसी इमेज बनानी है जिसमें अंडे और सोप का एसोसिएशन हो, और वो इमेज होनी चाहिए या मूवी होनी चाहिए. तो अब आप बनाएं अंडे और सोप के बीच में कोई अजीब सी एसोसिएशन.
0: अंडे डबल रोटी जो है वो भाग रही है अंडों के पीछे, और सोप उसके ऊपर ऐसे है जैसे क्लाउड होता है, वो क्लाउड ऊपर चल रहा है दोनों के ऊपर.
1: अच्छा चलो, ये आपने उसको भी बीच में लिंक कर दिया, आपने स्टोरी टेलिंग कर दी. ये भी टेक्निक होती है. ठीक है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप अलग से भी इमेज बना सकते हैं जिसमें बिल्कुल अलग हो कि जी फॉर एग्जांपल आपने इमेजिन किया कि कोई भी किसी इंसान को, बीवी कोई कर ले जिसने आपको काय के लेकर वो साबुन की जगह ना अंडे से हाथ धो रही है अपने ना, तो वो साबुन की जगह वो एक इमेज आ गई, क्योंकि साबुन की जगह अंडा पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल. लेकिन हम आपकी वाली लेंगे क्योंकि वो आपके माइंड में पहले आई थी. जो पहले आती है ना चीज वो यूज करनी चाहिए, वो जरा तगड़ी होती है. तो आपने अच्छा इमेजिन किया कि जी अंडे भाग रहे हैं और उनके ऊपर सोप जो है वो बादल बन
0: फ्लोट कर रहा है, जिस तरह बादल
1: बन के जा रहा है, और बारिश भी कोई कर रहा है, तो वो भी आप इमेजिन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सोप को जो थर्ड है उसको अगले फोर्थ से एक और इमेज बनानी है, उसमें सोप और वो होगा. ठीक है, फोर्थ जल्दी से कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटल. ठीक है, अब वो आप इमेजिन एक कोई इमेज सोच लें, जी आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं, उनके आप उन्होंने कहा जी हम पानी पी रहे हैं, आपने कहा पी लो, तो सब बोतल की जगह ना सोप निकाल के पीने लग गए. अब ये थोड़ी जीप चीज है, सोप कैसे पीता है. अब वो आपने अपने माइंड को फोर्स करना है कि इसको इमेजिन करो कि कैसे सारे बच्चे बैठे होंगे, और इसके लिए ना आपने आंखें बंद करनी है. ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट होती है सबको कि एटलीस्ट शुरू में आंखें बंद रखें, क्योंकि उससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, फोकस बढ़ जाता है, और विजुलाइजेशन करने में हेल्प आपकी होती है. एक दफा आदत हो जाएगी फिर इजी हो जाएगा. ठीक है, अब लिंक सिस्टम क्या करता है, अब मैं आपसे कहूंगी ना चलें अभी बताएं लिस्ट क्या क्या लेके आनी है एग्जांपल. तो पहली चीज जो थी वो क्या थी, वो यूजुअली हमें याद रहती है प्राइमरी और रिसेंसी इफेक्ट के लिए. तो पहली क्या थी जी, डबल रोटी. दूसरी क्या थी,
0: अंडे.
1: ठीक है, तीसरी क्या थी,
0: सोप,
1: क्योंकि अंडों के. अच्छा, और सोप के साथ चौथी क्या थी,
0: बॉटल.
1: अब मैं इसी तरह 15 और चीजें भी बता दूंगी, आप बॉटल के साथ कुछ और जोड़ दें. ठीक है, वही कुछ और जो है वो आप सिक्स्थ पॉइंट के साथ जोड़ दें, सिक्स्थ सेवन्थ. हर चीज का ना दो लिंक्स बन जो, इसलिए लिंक सिस्टम बोलते हैं. एक चीज का एक अगली से लिंक्ड है, एक पिछली से लिंक्ड है. सिर्फ जो जिसका नहीं होता है एक आगे, वो आखिरी चीज है और एक पहली चीज है. पहली चीज का आपने को आप कर सकते हैं, आप लोकेशन से लिंक कर सकते हैं, जहां पे आपको ऑर्डर दिया गया है कि जी लेके आओ, या जिसने ऑर्डर दिया आप उससे भी कर सकते हैं लिंक. ठीक है, अब इसमें सारी गेम सिर्फ दो चीजों की है. एक इमेज होनी चाहिए जिसको आप गौर से देख सकें, जिसके लिए मैंने आपको कहा आंखें बंद करें और जितनी सेंसेस उसमें यूज कर सकते हैं उस इमेज को देखते हुए, कि मतलब उसको देखें भी, उसमें सुने भी कि लोग क्या कह रहे हैं, अगर फील कर सकते हैं इमेजिनेशन में कैसे, जितनी सेंसेस इनकॉर्पोरेट करेंगे उतनी वो इमेज अच्छी तरह इमेजिनेशन बैठेगी. आंखें बंद करें, वो पहले बता दिया. और तीसरा, जितनी डिटेल आप देख सकते हैं, जब आप बच्चों को देख रहे हैं कि वो सोप निकाल के पी रहे हैं बॉटल, तो वो कैसी बॉटल है, उसके ऊपर कोई डिजाइन बना हुआ है, कोई सोप लिखा हुआ है, क्या है, जितनी डिटेल डालेंगे वो आपका माइंड उसको याद रखेगा. ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो एसोसिएशन है. एसोसिएशन ऐसी होनी चाहिए कि वो अजीबो गरीब हो. कि आप परसों भी मैं आपसे पूछू ना कि बताएं भाई वो डबल रोटी के बाद क्या था, तो आप कहें अच्छा वो अंडों के पीछे भाग रही थी, उसके बाद क्या था, फिर आपको कह नहीं अच्छा वो ऊपर कुछ चल तो रहा था, उसके क्या था, अच्छा साबुन था, और फिर साबुन के बाद वो होनी इतनी अजीब कि आपको वो ऑटोमेटिकली याद रहेगी, ठीक है। तो
0: दिमाग के झुरमट में गुम ना हो जाए, हाँ, वो
1: तो वो अजीबो
0: गरीबियत रखे,
1: अजीबो गरीब होनी चाहिए, उसको फनी बना लें, ड्रोना बना लें, खून खराबा डाल दें अंदर, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। जितना खून खराबा डालेंगे ना अंदर, उतना ही आप लोगों के रिएक्शन सुनेंगे उसमें, और वो आपको याद रहेगा।
0: चले, वन तो होगी टेक्निक लिंक और एसोसिएशन, दूसरी टेक्निक क्या है? ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम जल्दी जल्दी दूसरी टेक्निक के बाद,
1: दूसरी टेक्निक ना मैं दूसरी में कराऊंगी, और वो ये होगा, वो मैं आपको चार टूल्स बताऊंगी दैट विल फोर्स यू टू क्रिएट क्रेजी इमेजिनेशंस, क्रेजी एसोसिएशंस, जिसमें हम कहते हैं ना कि यार वो एसोसिएशन हम बोर सी बना लेंगे, वो अगले दिन हमें भूल जाएगी। तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो आप यूज करें कि आपकी एसोसिएशन दो चीजों के बीच में जो बनेगी वो ना चाहते हुए भी इतनी अजीब बनेगी कि आपको याद रहेगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगी इंशाल्लाह।
0: सामीन, उम्मीद है कि आपने जो पहली टेक्निक है, मैंने तो इसको सीखा है, लर्न किया, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको प्रैक्टिस भी करूं। और मेरा ये मसला है कि जब मेरी वाइफ मुझे कोई चीज़ कहती है तो मैं हमेशा उसमें से दो तीन चीज़ें भूल जाता हूं, और मैं फिर उसका आर्ग्यूमेंट ये बिल्ड करता हूं कि मैंने कुछ 70-80% अकम्प्लिश कर ली, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो लेने जा रहे हैं म्यूज़िक ब्रेक, और ब्रेक पर जब हम वापस आएंगे ब्रेक से, तो हम अदर टेक्निक्स भी मायरा से पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। (स्थाथ)

0: मेन प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेजबान अली अशरफ और आपके अपने एफएम 92.6 पर आप इसे सुनते हैं। इसके अलावा इसे आप एंड्रॉयड ऐप और जो आईओएस है उसके ऊपर भी सुन सकते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मायरा फारूक और ट्रेनर हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काम है। अभी हम इनसे पूछ रहे थे, ऑथर भी हैं, इनसे पूछ रहे थे कि मेमोरी कैसे, चीज़ों को मेमोराइज किया जा सकता है और मेमोरी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए हमने जो ब्रेक से पहले एक टेक्निक सीखी थी वो थी लिंक और एसोसिएशन। मायरा, और कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम एम्प्लॉय कर सकते हैं?
1: सो बेसिकली इसी टेक्निक को अगर बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारी एसोसिएशन यूजुअली वीक होती है, तो अगर हमारी एसोसिएशन बेहतर हो जाए ना तो हमारी काफी मेमोरी के मसले हल हो जाए। तो एसोसिएशन बेहतर करने के लिए अपनी जो भी आपने इमेजेस बनाई हुई उनका आपस में लिंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं चार टूल्स आपके साथ जल्दी से शेयर करूंगी, ताकि कोई भी चाहे ना बैठे बैठे एक अजीबो गरीब एसोसिएशन वो बना सकते हैं। तो पहला टूल जो है, जो मेरा फेवरेट टूल है, जो सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ, वो है सब्स्टिट्यूशन टूल। ठीक है, तो जिन दो पॉइंट्स को आपने लिंक करना है ना, आप एक को देखें कि वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, उधर से उसको निकाल दें और दूसरे वाले को डाल दें। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जो सोप वाला मैंने आपको बताया था, सोप और एग का, कि सोप यूजली कहाँ पाया जाता है, सिंक के पास, और वहां से मैंने सोप निकाला और उसकी जगह एक डाल दिया। अब अगर सोप को मैंने जिस भी चीज के साथ लिंक करना हो, वो चीज जब इधर आएगी ना, वो इमेज ऑटोमेटिकली अजीब ही बनेगी। और वो नहीं तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जहां एग्स कहाँ पाए जाते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है, अगर आपकी बुक शेल्फ आती है या मुर्गियों का वो जो होता है पूरा वो आता है, या तवा आता है जिधर जो लोकेशन आपके माइंड में आती है, वहां पर अंडा है, वहां से अंडा निकाल के उसकी जगह सोप डाल दें, तो आपको जब आप इमेज में देखेंगे कि है ये क्या, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये अंडे का लिंक सोप के साथ है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट टूल। दूसरा टूल है जी, आप दोनों के बीच में ना कोई एक्शन डालें, दोनों जो आपने इमेजेस बनाई हुई है ना उनके बीच में कोई ऐसा एक्शन डालें जो मतलब नॉर्मल ना हो। तो ज्यादातर अगर इनएनिमेट चीज है तो उनको तो आप आपस में फाइटिंग करा दें, उनकी उनकी रेस लगवा दें, कुछ भी एनीथिंग, मतलब आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी, तो एनी एक्शन विल, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना एक्शन को याद रखता है, और मगर ऐसा एक्शन जो मतलब ज्यादा आपको अटेंशन ग्रैबिंग भी हो। ठीक है, फिर तीसरा, या इस नाम रेडियो में बैठे हैं कोई जो चीजें, तो वो भी आपको याद रहेगी। तीसरा टूल जो है वो है इंक्रीज नंबर। ठीक है, अब हमारा ब्रेन अगर कोई एक चीज बहुत ज्यादा तादाद में देखता है ना, तो वो इमेज उसको अच्छी तरह याद रहती है। ठीक है, तो अगर दो चीजों को आपने आपस में लिंक करना है तो उनमें से एक की या दोनों की तादाद बढ़ा दें, लाइक मिलियंस एंड ट्रिलियंस में कर दें। ठीक है, तो अगर समझे हमारा जो लास्ट आइटम था वो बॉटल था, तो उसके बाद अगर फर्ज करें बीवी ने कहा चेयर भी लेके आनी है, ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक की तादाद आपने बढ़ानी है, तो आप इमेजिन करें कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चेयर्स आए, अब वो कहाँ आपको नजर आएंगी, जहां भी है स्पेस में है, जमीन में है, वो हैं, और वो बॉटल के साथ कुछ कर रही हैं, कोई एक्शन डाल दी, या बॉटल, या वहां पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बॉटल्स भी, और आपस में उनकी या तो जंग हो रही हो, या सारी चेयर्स जो है वो बॉटल्स को पी रही हैं, या जो भी है बॉटल के ऊपर चढ़ रही हैं, या बॉटल के अंदर से निकल रही हैं बहुत ज्यादा चेयर्स, तादाद बढ़ा देनी है। तो जब वो देखेगा ना ब्रेन, वो कहेगा अच्छा भाई ये तो बड़ी अजीब चीज है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी वक्त स्टोर हो जाएगी दिमाग में।
0: बिल्कुल।
1: और लास्ट वाला जो है टूल, वो है साइज चेंज कर दें, किसी एक चीज को बहुत ही बड़ा कर दें कि आसमान तक वो टच हो रही है। ठीक है, और अगर वो चीज ऑलरेडी बड़ी है तो उसको छोटा कर दें। सो फॉर एग्जांपल अगर सूरज बहुत बड़ा है तो छोटा सूरज इमेजिन कर लें कि कमरे में इधर सूरज लगा हुआ, यू नो, तो उसके नॉर्मल साइज से चेंज
0: कर, टेबल पे पड़ा हुआ छोटा,
1: हाँ, और वाकई उतनी वो हीट आ रही है उसमें, दिन रात वहीं से ही हो रहा है, तो इतना करें कि जो उसका नॉर्मल साइज है ना उससे या तो बहुत बड़ा कर दें, और अगर वो एक्चुअली बड़ा है तो उसे छोटा कर दें कि देखना वाला क्या यार ये क्या अजीब है, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा हो।
0: बिल्कुल ठीक है, तो मायरा ये सारी टेक्निक्स तो आपने बता दी। हमारी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम टेक्स्ट में याद रखना होता है, जिस तरह एसेज होते हैं या कोई लिटरेचर की चीजें हैं, वो एक कंटिन्यूस टेक्स्ट होता है, तो उसको हम किस तरह से, अब कितनी चीजें हम रिलेट करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या टेक्निक है?
1: जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन का आंसर याद करना है, उसके 12 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट्स में हर पॉइंट की इमेज बना लेंगे लिखे में, लेकिन फर्ज करें 12 पैराग्राफ्स हैं एक ही आंसर के, तो वो किस तरह करेंगे? आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है ना, उस पैराग्राफ को आपने एक फ्रेज वर्ड मेमोरी वर्ड बनाना है, ठीक है, टू वर्ड्स या थ्री वर्ड्स के अंदर ना एक फ्रेज बना देना है कि अगर उस पैराग्राफ में अगर येलो बॉटल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो आपने उसका नाम लिख देना येलो बॉटल्स, ठीक है, और उसकी फिर एक इमेज बना देनी है येलो बॉटल्स की. अगर आपने एक स्टेप अहेड जाना है तो उस पैराग्राफ में जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो अक्सर कोई भी नहीं याद रखता, उनकी जब आप इमेज बनाएंगे तो उस येलो बॉटल वाली इमेज में ही कहीं वो डाल दें, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल येलो बॉटल्स के साथ अगर एलिफेंट्स की बात हो रही है छोटी सी, तो इमेजिन कर लें बॉटल के ऊपर एलिफेंट बना हुआ है या एक एलिफेंट बॉटल पी रहा है, इस तरह की डिटेल आपने उस फ्रेज वर्ड में डाल दी, वो एक इमेज आपकी बन गई. फिर दूसरे पैराग्राफ में आपने यही प्रोसेस करना है, और दूसरे पैराग्राफ की जो इमेज है उसको फिर आपने फर्स्ट से लिंक सिस्टम की तरह लिंक कर देना है, और इसी तरह फिर थर्ड पैराग्राफ की जो इमेज होगी उसको सेकंड से लिंक कर देना है. इस तरह करते करते आपको पूरा वो याद हो जाएगा. और इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे देना चाहूंगी, मतलब किसी ने जो फीडबैक दिया था वो मेरी कजन ही है. वो स्कूल में ना वो जो बच्चे होते हैं ना जो बस दुआओं से ही चल रहे होते हैं, वो ऐसी ही थी. तो उसे भी मैंने कराई तो मेरे पास आई एक दिन, उसको इंटरेस्ट हुआ बड़ा, उसने कहा ये मेरा सवाल है मुझे बताएं, एक बड़ा लंबा सवाल था. तो हमने यही वाली टेक्निक उस पर लगा दी. एग्जाम था उसका कोई दो महीने बाद मेरा ख्याल है, उसके बाद उसने उसको कभी हाथ नहीं लगाया. उसने कहा ऐसा टॉपिक आता ही नहीं कभी, लेकिन मैं वैसे ही वो महीने बाद एग्जाम था, अब वो आ गया टॉपिक वही वाला, बिल्कुल वही सवाल आ गया. तो वो ये कहती है कि मैं ना, मैंने कहा ओहो ये तो वो है, कहती मेरे माइंड में पक्का था कि मुझे तो याद ही नहीं आएगा जो मैंने किया हुआ था. कहती लेकिन ना बीच में एक पॉइंट मुझे याद आ गया, एक तो आ ही जाता है अगर 10 पॉइंट है तो एक, कहती मेरे माइंड में ना मुझे याद आया. तो कहती हुआ ये को एक की वजह से, क्योंकि लिंक बने हुए थे ना, वो पिछले भी याद आ गए और अगले भी याद, और कहती वो आ ही जाए और मैं थी कि मैं जल्दी से लिख लूं कहीं मैं भूल ना जाऊं, हालांकि उसी वक्त याद आ रहे हैं, एग्जाम में उसको टेंशन शुरू होगी सारे याद आ रहे हैं मैं कहां लिखूं. तो वो माशाल्लाह उसने बड़े अच्छे नंबरों से फिर वो पास किया. तो जब उसने मुझे ये बताया ना, तो फिर मुझे हुआ कि नहीं भाई ये जो है ना
0: टेस्टेड हो गई.
1: वो तो मैंने अपनी बहन पे भी टेस्ट करी थी शुरू में, फिर अब तो माशाल्लाह मतलब काफी स्टूडेंट्स और काफी लोगों से फीडबैक मिला था, लेकिन ये वन ऑफ द फर्स्ट फीडबैक्स ना आपको याद रहता है.
0: बिल्कुल ठीक
1: तो ऐसे था.
0: अच्छा मायरा, प्रोग्राम में अब हम लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एक किताब जो कि बड़ा एक मौलवियाना किस्म का टॉपिक है कि मरने के बाद हम उठ पाएंगे या नहीं, कुरान इसके बारे में क्या कहता है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. सामीन हमारे साथ रहिएगा, हम लेने जा रहे हैं एक म्यूजिक ब्रेक.

और उसके फौरन बाद वो जो साहब थे, जो नौजवान थे जिन्होंने वो पतंग वहाँ उतारी थी, और उसके बाद उसको तोड़ के अपने पास रख के और पढ़ के तहरीर उन्होंने उसको फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहरहाल अभी जाहिर है मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी एज बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे ये चीज नई लगी, अछूती लगी, दिलचस्पी लगी और मेरे कयास को उसने बढ़ावा दिया। और मैंने इस चीज को यकीन में ढालने के लिए कि ये क्या पैगाम था, ये क्या सिलसिला है, मैंने इरादा किया कि मैं 2-3 दिन बाकायदगी से बगैर नागे के कोशिश करूंगा स्कूल से आके खाना खा के उसी वक्त छत पे आऊं। लिहाजा दूसरे दिन जब मैं दोबारा अपने घर की छत पे आया, उसको बाला खाना भी कहते हैं लेकिन मैं जान के इस्तेमाल नहीं कर रहा, कि बाला खाना का लफ्ज जो है, बाला खाने का लफ्ज आजकल बल्कि पुराने जमाने में भी अदब में भी ज्यादातर उस महल्ले से वाबस्ता है जिस महल्ले में नाच गाना होता है, शाही मोहल्ला भी उसको कहते हैं लाहौर की जबान में। लिहाजा मैंने खुद जान बूझ के बाला खाने का लफ्ज इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया है, परहेज किया है, गुरेज किया है। लिहाजा मैं जब मुकर्रर वक्त पे छत पे चढ़ा तो आप यकीन जानिए कि मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया। ये साहब भी उसी तरह छत पे मौजूद थे और वो जो साहबा थी वो भी अपने छत पे मौजूद थी। जब तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो मैंने अंदाजा लगा लिया, थोड़ा सा मैंने अपने दोस्तों से भी जिक्र किया, अपने कजिन से भी जिक्र किया जो कि मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार थे और शायद ऐसे कामों में मुलव्वस भी रहे हों और होते होंगे, उनसे मैंने जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि उस लड़के ने जो पतंग उतार के कलम के साथ स्याही में डबो के जो पैगाम लिखा था उसने छत पे मिलने का वक्त लिखा था कि भी मैं भी इस वक्त आऊंगा छत पे, आप भी इस वक्त छत पे आ जाइए ताकि हम एक दूसरे को देख सके। तो और कीजिएगा किस तरह की थोड़ी सी पाकीजगी का अंसर भी आपको इसमें नजर आता है। यही रहिएगा, मैं एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आता हूँ।

महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

जी जनाब, दोबारा वापस आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मुझे ये पता लगा तो ये एक बड़ा छूता तरीकाकार था, लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सी खूबसूरती ये नजर आती है जो आजकल के आशिकों में कम कम पाई जाती है। जाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद जमाना है, ऊपर से इंडियन फिल्मों ने, इंडियन ड्रामों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया नई नस्ल का। इसी 92.6 यूसीपी की दुनिया के चैनल के तवस्सुत से मैं अपने नौजवानों को ये भी पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा खुदारा, इंडियंस आपको पहले अपने ड्रामों की जद में लेके आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी तहजीब का आदि करते चले जाते हैं और आपकी सकाफत से आपको दूर ले जाते हैं। सकाफत में जब अजनबियत आ जाए, याद रखिएगा, तो वो सकाफत अपने नहीं रहती। खुदारा इस इंडियन वार से, इस इंडियन प्रोपेगेंडे से अपने आप को बचाइए, और अगर बड़े भी मेरे सुनने वालों में शामिल हैं तो अपने बच्चों को खुदारा तरीके से रोकिए। सख्ती से रोकेंगे तो वो और ये शौक परवान चढ़ेगा। मैं आपको बता रहा था, पता चला कि वो टाइमिंग्स के बारे में इस तरीके से वो पैगाम पहुंचाते थे। उसके बाद मैंने देखा, एक दिन इत्तफाक हुआ कि मैं जब उसको कहते हैं हाफ डे जुमा या हफ्ता, उस जमाने में हुआ करता था, स्कूल में हाफ डे होता था, जिसको हम कहा करते थे आधी छुट्टी सारी, यानी हाफ डे में छुट्टी होती, बहुत खुशी का दिन होता था। उस दिन हम जो लड़के वाले होते थे जल्दी छतों पे आ जाते थे दोपहर के वक्त, खासतौर पे सर्दियों में, गर्मी में तो माया आने नहीं देती थी। अक्सर कहा करती थी कि तेरा रंग जो बिल्कुल स्याह हो गया है, धूप में पतंगे उड़ा उड़ा ना जाया कर ऊपर, तेरे मुंह पे कालक लग गई है। तो हम अक्सर कहा करते थे, अगर पहले ही कालक लगी हो, कि पहले ही रंग स्याह हो, तो मजीद कालक क्या लगेगी। एनीवे, माओ के नजदीक तो हर कोई, आपको पता है ना, शहजादा ही होता है, ठीक है। तो उस दिन मैं दोपहर को ही, दोपहर के आने से पहले छत पे चढ़ा तो मैंने देखा कि दोनों ने इस छत पे जो मेरे घर के करीब थी, जहाँ पे भाई साहब जो थे, कि मैं नाम बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, नाम नहीं लूंगा, ताकि राज में रहे, इश्तियाक रहे, तो उन्होंने अपनी दीवार पे एक बड़ा सा सफेद कागज चस्पा कर रखा था, दूसरी तरफ छत पे वो मोहतरमा भी मौजूद थी, उन्होंने भी बड़ा सा कागज चस्पा कर रखा था, यानी लगा रखा था लेवी के साथ, सुरेश के साथ, जिसको आजकल अब रूहू कहते हैं, स्टिकिंग जो होता है, फ्लूड होता है, उस पे कलम के साथ साथ बड़ी बड़ा एक पैगाम लिख रहे थे। और जाहिर है दोपहर का वक्त था, दोनों अपने हाल में मगन थे। आपको पता है इश्क ना जात देखता है, ना वक्त देखता है, ना माहौल देखता है, वो अपने हाल में मगन होता है। लिहाजा दोनों बड़े बड़े पैगाम लिख रहे थे, और बाद में पता चला कि क्या था, उस छत पे सफेद कागज लगा के कलम के साथ जली हरूफ में ये लिखा जाता था कि कब, किस वक्त, किस दिन, कहाँ मिलना है। और आगे से लड़की की तरफ से अगर हाँ हो जाती थी तो जो भाई साहब थे उनके वारे नारे, उनके बाछें खिल जाती थी, लग जाता था, हंसते थे और गुनगुनाते थे, सीटियां बजाते थे, विस्लिंग करते थे, पता लगता था कि उनको कामयाबी हो गई। और बाद में पता चला, जब हम भी थोड़े से बड़े हुए, जाहिर है हमें भी ये शौक चुराया होगा थोड़ा सा जरूर, वो तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, जाहिर है मैं उस्ताद हूँ और जिस मकाम पे हूँ, अगर मैंने अपनी कहानी बयान करनी शुरू कर दी तो हो सकता है मुझे यहाँ से छुट्टी करा दें, लिहाजा मैं उसी पे रहूंगा कि मैं जग बीती बयान करूंगा, आप बीती बयान नहीं करूंगा, ठीक है। तो पता चला जनाब, कजन से, मल्लेदारों से, दुकानदारों से, कि जी वो कहाँ मिलते थे, सबसे बड़ी जो मीटिंग ग्राउंड होती थी ना, मीटिंग प्लेस होता था, जो जाए मुलाकात होती थी, वो लाहौर का बागे जिना या शालामार बाग, क्योंकि अंदरूने शहर के रहने वालों से बागे जिना, जिसको लॉरेंस गार्डन भी कहते हैं, वो नजदीक था, इसलिए ज्यादा वहाँ जाके मिला करते। और बड़े बड़े कहते हैं खूबसूरत तहाइफ के तबादले भी होते थे। तहाइफ के तबादले क्या है, चले आपको भी दो तीन बताता चलो, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है अलग से, कहाँ कहाँ मैं आपको बयान करूँ। दुरूने लाहौर की कहानियाँ इतनी ज्यादा है की शायद मेरी उम्र कम पड़ जाए और ये मौजूद खत्म न हो पाए। सो जनाब, मेरे रिकॉर्डर ने भी, जाहिर है मेरा रिमोट उनके हाथ में, उन्होंने मुझे कहा, और वाकई आपको पता है, जैसे हम एक और प्रोग्राम भी करते हैं, मैं और वो जरानी बच्ची जो है नूर फातिमा, उसमें भी हम कहा करते हैं कि जब तक ये पूरा अमला, ये लोग ना हो, और साथ इनके जो ऊपर दीन हैं, इनका अगर तावुन हासिल ना हो, इनका अगर मुस्बत इशारा ना हमें मयसर हो, तो ये प्रोग्राम कभी हवा की लहरों की जीनत बन ही नहीं सकता। लिहाजा मैं, समझिएगा, इसको यही इख्तिताम करते हैं, मकसद यही है कि आप आगे अंदाजा लगाइए कि बाज़ वाकयात में, बाज़ सिलसिलों में ये जो छत का इश्क था वो शादी पे भी मुंतज होता था। दोनों के खानदान आपस में मिलके
फैसला करते थे और दोनों मिल भी जाते थे। ये जो है सिलसिला, ये पहला मौजू ये खत्म होता है, दूसरा मौजू फिर हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 to life station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: उन्होंने काम किया, लेकिन जो उनको इज्जत और रुतबा उनको मिला वो किसी और को नहीं मिल सका।
1: मौसीकी का आगाज उन्होंने तबला सीखने से किया, लेकिन उसके साथ साथ गायकी की रियाजत भी करते रहे। उनके फनी सफर का बाकायदा आगाज अपने वालिद की रस्म चहलम पर हुआ, जो उनकी खानदानी रिवायत थी।
2: जिस तरह वो समेट देते थे सब कुछ कवाली में, ये उन्हीं का खासा था।

0: ये अल्लाह की अता होती है और गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है और लोगों से प्यार कर रहे हैं।
1: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान कवाली के मैदान में कदम रखते ही जान चुके थे कि कवाली को जिंदा रखना है तो कुछ मुनफरिद करना होगा। उन्होंने सरगम और लयकारी का इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल करके कवाली को एक ऐसी शक्ल दे दी कि सुनने वाला उसके सहर में जकड़ा चला जाता। कवाली जुग्राफियाई, लसानी और मजहबी हदूद की कैद से आज़ाद हो गई।
2: मुझे बचपन से यही शौक था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा नया अंदाज सीखूं जिससे मेरी एक अलग पहचान हो।

जब भारत के बड़े बड़े मौसीकारों ने खान साहब को कॉपी करना शुरू किया तो बिलाआखिर वो खुद मैदान में उतर आए। माइकल ब्रूक के साथ कामयाब तजुर्बात के बाद रेमिक्स म्यूजिक स्टार बाली सागू के साथ भी फ्यूजन किया, जिसने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए।

0: कंट्रोल, आवाज आ रही है? सच बोलूं, दिल भी थोड़ा कांप रहा है।
1: आवाज भी और
2: धड़कन भी सन्न हो गया।
0: The nets fly over and out.

फर्क पड़ता है जब कानून नाफिज करने वाला हर जवान हर इदारा अपनी कौम को मनुष्यात से बचाता है और हर शहरी 1415 पे मुकम्मल राजदारी और जिम्मेदारी से मनुष्यात फरोशों की इत्तला देता है। फर्क पड़ता है हमारी हिम्मत से, हमारी कॉल से। 1415 मनुष्यात अब नहीं।

तक। जिंदगी को जीने से जिंदगी को पाने तक। उस कबा के उठने से उस कबा के खुलने तक। आंख के तमाजत से होंठ की हरारत तक। गाल पे लगा गाजा होंठ पे लगी लाली खुद ब खुद पिघलने दे। खुद ब खुद पिघलने से खुद ब खुद पिघलने तक। खुद ब खुद पिघलने दे हाथ की लकीरों से रथ जगों के तीरों से। और आगे जाने दे और आगे जाने से

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मुझे नहीं करना कोई काम, मैं जा रहा हूं घर जाओ।
1: मां तंग थी और रोज रोज जी झगड़न का हाणी यू न लदो।
2: परेशान न थी दोस्त, ही वट इन जो हिक्की कश तुझी हर परेशानी दूर करे छरींदो।
1: नशो परेशानी जो हल ना है।
2: दोस्त आया तुझो वट लगाए कश।
1: तू मुझो दोस्त न तो थी सकी। दोस्त सुठा मशवरा दींदा है, हौसलो दींदा है। नशो न मुझो फैसलो, नशो हरगिज़ न।

0: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
1: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. Ki Duniya. Ki Duniya.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

0: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain FM 92.6 UCP ki duniya, and this is Umaima Lone from Faculty of Languages and Literature. Today we are going to discuss modern classroom and its challenges, and for this topic we have with us our brilliant and vibrant faculty members, Ms. Taiba Binte Mahmood and Ms. Humaira Rauf. Ms. Taiba Binte Mahmood ke baare mein thoda sa kuch kehta chalun, to she has won to herself the best teacher award at university level, and she has surely made the department proud. And as for Ms. Humaira Rauf, she is a diligent PhD scholar and has published her valuable research in renowned journals, and we welcome them both for today's session. Kaise hain aap dono?
1: थैंक यू सो मच उमाइमा, बिल्कुल ठीक. आप बताएं, आप कैसी हैं?
0: अल्लाह आपके सामने, अल्लाह का शुक्र. आप बताइए, आप कैसी हैं? तैयबा, आपसे शुरू करते हैं. यू हैव जस्ट वन, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर विन.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
0: हाउ डज इट फील, यू नो, यूनिवर्सिटी लेवल पे बेस्ट टीचर का अवार्ड बैग करना? इट्स अ बिग बिग विन.
1: इट इज डेफिनेटली अ ह्यूज विन, अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली. और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल ऑनेस्टली. ठीक है, मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी. और मजे की बात आपको ये बताऊँ कि व्हेन आई रिसीव द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इन माई माइंड आई थॉट दैट आई हैव वॉन इट एट द फैकल्टी लेवल. तो वो कोई आधा दिन गुजरने के बाद आई रेड द ईमेल अगेन, कहीं खुशी में कि अच्छा दोबारा से पढ़ती हूँ. एंड देन आई रेड द थिंग दैट यूनिवर्सिटी लेवल. आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, दिस
0: वुड बी अ प्लेजेंट शॉक.
1: एग्जैक्टली. सो दैट वाज रियली गुड, यू नो. ऑब्वियसली इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, एंड आई मस्ट से दैट it feels great to be acknowledged. Nah, if you are putting in effort, so obviously it's like a reward, a
0: definitely,
1: true reward.
0: Definitely, many congratulations for that. तो फिर इसी से आपसे ही शुरू करते हैं कि बेस्ट टीचर का अवार्ड आपने विन तो किया है, अब आप ये भी बताइए कि बिगेस्ट चैलेंज आपको मॉडर्न क्लासरूम में क्या लगता है?
1: अच्छा, वाकई ऑनेस्टली आई थिंक दैट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी टॉक्ड अबाउट, बिकॉज अब टीचिंग में ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 6 years नाउ दैट आई एम विद UCP. और हर दफ़ा जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो ईच यू नो सेशन सीम्स टू बी अ न्यू चैलेंज, अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस टीचर्स एज वेल. जिस तरह से हमने पिछले सेमेस्टर को पढ़ाया हो, अगर आप सेम सब्जेक्ट भी बात कर लें, तो आई डोंट थिंक कि आप सेम मेथडोलॉजी सेम कॉन्टेंट को आप रिपीट कर सकते हैं. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस वाइल टीचिंग टूडेज अंडर ग्रेजुएट क्लासेज दैट इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट लेवल, एंड देयर अटेंशन स्पैन इज सो लो. दे आर हुक टू देयर फोन, सो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट कि आप उनको उनके मोबाइल फोन से हटा के अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें.
0: आई डू हेट कॉलिंग टैगिंग देम विद जेन जी टाइटल, बट डेफिनेटली आई कैन नॉट डिनाई इट. अब वो जेन जी भी जिधर हम लगा दें तो साथ ही वो आ जाता है कि आपका अटेंशन स्पैन इज रियली शॉर्ट. तो मैं आपकी इस बात को सेकंड करते हुए ये कहती हूँ, फिर हम क्या कैसे एज अ टीचर, हाउ कैन वी यू नो पुश देम और मोटिवेट देम to get into or indulge into in a pleasing way, definitely to studies and all that.
1: I think Umaima, jo hamara jo problem ya root cause banti hai na, solution bhi usi mein hi dhoondna padta hai. Like I mentioned that mobile phones are becoming the root cause of all the problems, so main phir koshish ye karti hu ke kuch na kuch tarika aisa nikalun classroom ke andar jisme wo thoda bahut mobile use kar sake, just to search the meaning of words, just to google some concept. ठीक है, and now thanks to you know ChatGPT, ऐसा भी अब तो मैंने classrooms में किया है, क्योंकि I know that they are going to take the easy way out, so why not give it to them, right? So अब तो मैंने एक दो assignments और ऐसी classroom discussions रखी जिसमें I give them the question कि मैं उनको कहती हूँ ये लिख के दो तुम ChatGPT को. ठीक है, और and they do that happily obviously, and then exactly the prompts वो हर कोई अपने according दे रहा होता है. So I just nudge them in that direction and I ask them कि ये इस तरह से लिख के दो and tell me. So वो ये होता है कि फिर we get a lot of you know different answers, mostly around the same themes or and exactly where I want them to be. तो फिर ये होता है कि उससे एक आप अच्छी discussion generate कर लेते हो और understanding हो जाती है.
0: This is a wonderful idea. हुमा, आपकी तरफ आते हैं and I ask you the same question कि आपके नज़दीक biggest challenge क्या है classrooms के अंदर?
2: अच्छा जी, biggest challenge according to me, I would like to extend what Taiba said. She rightly mentioned that the attention span of students these days, it has really decreased a lot, right? And it is very difficult for me के students जो हैं उनको class में engaged रखना and to make sure that that they participate. You see, they have been learning this language from the day one. And this is what I tell to my students as well, that from the day one, from the playgroup, aap ye language seekh rahe hain, A, B, C, D, A, B, C, D, and then moving towards grammar, ke aapko grammatical rules bataye jate hain. But where is the application? How you to speak confidently in class, sabse bada jo ek masla aata hai, wo mere khayal mein class mein yehi aata hai, that they don't feel like speaking. And even though when they are comfortable in speaking, they are unable to speak in front of the class. So this is the biggest challenge, I think, in today's world, especially in this modern era, jahan par mobile, social media, and these are the things. Aur students se zyada, I think, hume suffer karna padta hai in a way.
0: Definitely.
2: That they are not paying attention to what we say. There was a time jab ek waqt tha, 8 to 9 hum dramas dekhte the, jisme ek ghante mein break bhi aati thi. We knew ke 10 minute ki break hai, उसके बाद हमारा ड्रामा दोबारा शुरू होगा. वो एक घंटा शॉर्ट होके यूट्यूब पे आया, दैट्स 40 मिनट्स. और अभी भी उसमें जब 20 सेकंड्स की एड आती है, तो माय किड्स दे आर ऑफ द व्यू, मामा स्किप करें इसको, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें. और उससे भी स्क्वीज होता होता अब वो रील्स पे आ गया है, राइट? सो आई थिंक जो मीडिया, सोशल मीडिया है, वो भी एक तरह से हमें ऑपरेट कर रहा है. और ये चैलेंज जो है क्लासेस में हमें कंट्रोल कर रहा है. इट इज कंट्रोलिंग अस इन अ वे. एंड बिलीव यू मी, सोशल मीडिया इज योर बेस्ट फ्रेंड, एआई इज योर बेस्ट फ्रेंड इन अ वे कि फेसबुक, इंस्टा पे, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, इट्स देयर. So that's why this device has become your best friend, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग, आपके मूड्स के अकॉर्डिंग मूव कर रही है.
0: आप दोनों ने मेंशन किया, AI का मेंशन किया, आपने चैट GPT का मेंशन किया. मैं दूसरा क्वेश्चन इसी से ही पूछती हूँ, इसी से रिलेटेड है. What do you feel about this technology? What do you feel that any such technological application or apparatus that is definitely we are bound to use it, क्योंकि जिस तरह से आपने बात किया कि ये हमें कंट्रोल कर रहा है, बाकी ये कुछ भी है, इसके इस यूजेज को आप कैसे रेट करते हैं, एंड रेट इट इन द क्लास अमंग द स्टूडेंट्स, ये कैसे देखते हैं आप दोनों?
1: Mama, if I talk about my own opinion and experience, so शुरू में तो जैसे ही जब हम, आपको पता है, एक तहलका सा मच गया था जब हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, और फिर जी वो हमें पता चला कि वो सब ने ऑब्वियसली उसको एक एक दफ़ा तो ट्राई तो ज़रूर किया हम सब ने, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी भी, ठीक है, कि जी अच्छा ये क्या चीज़ है. और बड़ा मज़ा आया जब उसने आपसे बड़े एक यू नो एक ह्यूमन बींग की तरह बातचीत की, ये इस तरह से एग्जैक्टली यू नो एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह बात उसने की. आई एम सॉरी टू से, लेकिन बेटर देन मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स इवन, ठीक है,
3: बड़ा में बात की,
1: सही इंग्लिश में कंपैशनेट होके, ठीक है, वो पिक कर लेता है ना कि आप किस तरह का चाह रहे हो, ठीक है. सो द थिंग इज कि वो शुरू में एज टीचर्स, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ तो वो ऑनेस्टली बहुत थ्रेटनिंग था हमारे लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर आवर कोर्सेज लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर दोनों में, चूँकि आप भी लिटरेचर की हैं, सो यू नो कि वो बहुत थियोरेटिकल आंसर्स हमारे हमारी फील्ड में रिक्वायर्ड होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ. और वो हम जब बच्चों को असाइनमेंट्स दे रहे थे, हम उनको टास्क दे रहे थे जिनमें उनकी राइटिंग एंड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग वॉज रिक्वायर्ड, तो वो हमें ChatGPT से कॉपी पेस्ट, यहाँ सो मच सो दैट यू नो फुल थीसिस इवन आई हर्ड दैट दे वर कॉपीड.
0: Robotic writing.
1: Exactly. So वो जो first phase था, that was really really you know threatening. लेकिन उसके बाद फिर ये एक phase आ गया जिसमें we realized कि there is no stopping it. आप इसको वो कबूतर की तरह आप आंखें नहीं बंद कर सकते इसके वो जो मिसाल है, ठीक है. सो वी हैड टू एम्ब्रेस इट, वी हैड टू फाइंड वेज टू लेट इट बिकम अ पार्ट ऑफ आर टीचिंग मेथडोलॉजीज एज वेल, एंड टू इनकॉर्पोरेट इन सच अ वे दैट लर्निंग कुड टेक प्लेस. तो फिर ये है कि जो लास्ट ईयर जिस तरह से गुजरा है उसके अंदर आई एम रियली ग्लैड दैट आवर फैकल्टी यू नो जम्प्ड ऑन दिस ट्रेंड एज वेल, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच इट कुड बी यूज्ड फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि आप बच्चों को इसको यूज करने से रोक नहीं सकते, सो वाई नॉट यूज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, कि बच्चे उसको यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो आपकी ही इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है.
0: अच्छा तैयबा, आई जस्ट यू नो रिक्वेस्ट कि हम इसको यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, क्योंकि हम एक म्यूजिकल ब्रेक पे जा रहे हैं और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. वी विल कैच अप.

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCB ki duniya.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया और हम बात कर रहे थे मॉडर्न क्लासरूम एंड इट्स चैलेंजेस के ऊपर. और मिस तैयबा से हम सवाल कर रहे थे कि भाई हाउ हैव यू इंटीग्रेटेड AI इन योर क्लासरूम्स. मिस तैयबा इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम सोमा की तरफ आते हैं.
2: थैंक यू मायमा जी. हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब इट्स अ रियलिटी. AI इज अ रियलिटी एंड यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट, राइट? सो बेहतर यही है दैट वी नीड टू वी एज टीचर्स, वी एज यू नो एजुकेशनिस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस एज वेल, ऑफ आवर टीचिंग मेथोडोलॉजीज एज वेल. सो देर आर डिफरेंट कोर्सेज, देर आर डिफरेंट platforms that help you with that. क्योंकि देखो एक बिल्कुल नई चीज़ आ गई ना एकदम से, हमें भी तो नहीं पता था. तो टीचर्स ऑल्सो बिकम लर्नर्स इन दिस थिंग, ठीक है? सो अब जैसे मैं कोई कोर्स पढ़ाना शुरू करती हूँ तो उसमें मेरी हमें अब इस दफ़ा से ये प्रायोरिटी होती है कि मैं ये देख सकूँ कि मैं इसके अंदर AI का यूज़ किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, मैं कौन कौन से टॉपिक्स को इसके साथ कन्वर्ज कर सकती हूँ कि वो ज़्यादा यूज़फुल हो सके मेरे बच्चों के लिए भी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें ऑब्वियसली नई लगेंगी. थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए भी एज अ टीचर होगा कि आप भी अपनी टीचिंग मेथड्स में थोड़े से सेट हो जाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम. के लेट्स से कुछ लोग स्लाइड्स यूज करते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट बुक्स को रेफर करते हैं. सो आई थिंक AI का यूज़ भी ना इस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता ना हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपनी टीचिंग में. और अगर हम नहीं करें तो वो आप अपने स्टूडेंट्स को तो रोक नहीं पा रहे, तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा आपके और आपके स्टूडेंट के बीच में. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम उस गैप को खुद ही से मिनिमाइज कर दें, ठीक है? तो मुझे तो यही लगता है, मेरी यही अप्रोच है अभी तक के कोर्सेज मैंने एक दो देखे ऑनलाइन जो कि मैंने किए. एक लम्स का भी था उमायमा, मैंने आपके साथ ही वो फ्यूचर समिट हम लोगों ने अटेंड किया था. तो यू नो उसमें ये AI को उन्होंने बहुत ज्यादा दे टॉक्ड एग्जैक्टली. तो उसी में वो उन्होंने एक कोर्सेज थे लम्स एक्स की तरफ से. सो उसमें वो AI का था कि दे यू नो गिव यू अ बेसिक आइडिया. और मुझे उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा दैट यू कैन यूज इट फॉर असेसमेंट एज वेल. तो जो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट वी हैव यू नो बिग क्लासरूम साइजेस, स्ट्रेंथ 35 प्लस की होती है. सो वो अगर हमें इस तरह से क्रिएटिव मेथड्स मिल जाएं टू असेस, वो आई थिंक वो तो बहुत ही अच्छी डोमेन बन जाएगी. और इसी तरह से हाउ टू यू नो डिज़ाइन योर असेसमेंट्स क्रिएटिवली, और इस तरह से कि बच्चों को AI आप यूज़ तो करवा रहे हैं लेकिन सम हाउ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही हो और वो उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहे हैं. सो ये वाला पार्ट आई थिंक फॉर अ टीचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
1: वेरी वैल्यूएबल इनसाइट्स. थैंक यू सो मच. हुमा आपकी तरफ आते सेम क्वेश्चन कि हाउ आर यू इंटीग्रेटिंग इट, यूजिंग इट, डू यू फाइंड इट गुड या बैड, आर यू अगेंस्ट इट, या कुछ भी ऐसे है जो आप AI के बारे में अपनी क्लासरूम्स के मतलब कुछ कहना
3: चाहिए? जी उमायमा, व्हेन वी टॉक अबाउट AI, व्हाट आई मस्ट से इज कि अगर हम AI को अपनी क्लास में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो एज अ टीचर वी आर गोइंग टू फेल. यू सी AI इज द न्यू वर्ल्ड एंड बीइंग अ टीचर हमें अपने आप को अपडेट करना है. एंड इफ वी डोंट अपडेट आवर सेल्व्स तो देयर वुड बी अ बिग गैप बिटवीन आवर स्टूडेंट्स एंड अस. एंड The first thing we need to do is to form a connection with our students, a strong connection. और अगर हम वही पुराने ज़माने की एक traditional teaching को लेके चलेंगे तो I don't think we would be able to teach them well. So the good thing is to go with the flow, first of all. Incorporate technology in your class, but as a teacher you have to intervene. ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल free hand दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी monitoring नहीं कर रहे. You need to see what they are up to, you need to see their potentials and then work on it. You see, we all got our potentials. Somebody is good in writing, somebody is good at speaking. मतलब हर बंदी की एक अपनी potential है, right? So when we talk about AI, AI is completely a new world. अब मैंने there was a research in 2019 जिसमें मैंने COVID के दौरान एक research की थी that the challenges we faced during COVID-19 और उसमें teachers के interview मैंने किए थे. What teachers said के technology को use करना during COVID हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. और देखें हमें तो हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना है ना. हम online भी जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है. आफ्टर कोविड हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में. अब उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि द मैच्योर टीचर्स दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन देयर क्लासेस. वी हैव टू अडेप्ट, वी नो इट वेल, राइट. सो द गुड थिंग इज कि आप लोग अपने आप को चेंज करते रहें. आप लोग अपने आप को इवॉल्व करते रहें फॉर द बेटर फ्यूचर, फॉर आर ग्रोथ, फॉर आर स्टूडेंट्स ग्रोथ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर हेयर फॉर आर स्टूडेंट्स. वी हैव टू थिंक अबाउट आर स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड देन आर सेल्व. तो अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो देट वुड बी रियली डिफिकल्ट. एंड बींग अ स्टूडेंट ऑफ PhD, आई सी माई स्टूडेंट्स एंड आई टेल देम कि जिस तरह से आप लोग बैठ के अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर टॉकिंग, वी हैव बीन इन द सेम फेज. अब जैसे आप एक स्टूडेंट की तरफ देखते हैं, वो अपनी आईज रोल करके यूं ऐसे बैठ जाता है. सो आई टेल हिम कि मुझे पता है तुम्हें जवाब नहीं पता एंड यू आर यू नो ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ ड्रामा इन फ्रंट ऑफ मी. दीज आर द थिंग्स. और बींग अ PhD स्कॉलर, आई वुड लाइक टू से कि AI का यूज मैंने अपने थीसिस में भी किया है, बट इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे. अब जैसे अगर हम चैट GPT का इस्तेमाल अपनी क्लास में करते हैं, तो गिव देम अ टॉपिक, असाइन देम अ टॉपिक, टेल देम टू गूगल दिस टॉपिक. चैट GPT पे आप ये टॉपिक लिखें, आपके पास जो भी डिटेल्स आती हैं, क्रिटिकली इवेल्युएटेड एंड देन आंसर द क्वेश्चन. दैट्स द थिंग विच आई डू इन माई क्लासरूम. और हमारा तो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में जो हमारा कोर्स पैक है वो एक बहुत मॉडर्न फॉर्मेट पे जो है वो बना हुआ है, राइट. उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं. क्योंकि आई थिंक जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेज हैं उसमें जो सबसे बड़ी एक लैक है, जो एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को अंग्रेजी सिखाते तो हैं, बट वी डोंट गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक वेयर दे एक्सप्लोर देमसेल्व्स, जहां पर उनको अपनी पोटेंशियल का पता चले. और वो उसी सूरत में है जब आप स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं. सो आई रियली लाइक दिस कोर्स पैक इन अ वे कि ये स्टूडेंट्स को चांस देता है कि दे यू नो इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स, दे प्रैक्टिकली डू इट एंड देन दे गो अहेड विद दैट थिंग.
1: थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल आंसर्स. और अब इसी से ही आगे लेके चलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इससे पहले एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं विद अदर क्वेश्चंस. यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCB की दुनिया. स्टे ट्यून्ड विद अस.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: Welcome back. You are listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya, aur hum baat kar rahe hain modern classrooms and the use of AI. अभी तक हमने बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन बिल्ड की है विद तैयबा बिनते महमूद एंड हुमा रऊ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, और इतने लवली और वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली हैं रिगार्डिंग एआई एंड हाउ टू टेक क्लासरूम इन अ मॉडर्न सेटिंग इन अ मॉडर्न वे एंड हाउ टू मॉडर्नाइज योर सेल्फ विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी. इसके साथ मैं बिल्कुल लास्ट पे आऊँगी आप लोगों से बात करते हुए कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर दी स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर्स मदर्स ऑफ आर स्टूडेंट्स. एक बहुत रूहानियत रिलेटेड है हमारा रोल और पेशा भी. इसी की बिना पे एक इसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन है कि आप अपने क्लासरूम्स में एज कोर्स एडवाइजर्स एज बैच एडवाइजर्स हाउ डू यू हेल्प योर स्टूडेंट्स इन देयर कैरेक्टर बिल्डिंग, हाउ डू यू मोटिवेट देम, यू काउंसिल देम, और इन वॉट एवर वे यू शेप योर स्टूडेंट्स. तो आप पे पहले आते हैं.
2: उमायमा, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इतना आइसोलेटेड क्लासरूम का माहौल हो गया है कि बच्चे उस तरह से, जो उमा ने भी बात की थी, तो आई फेल्ट रियली कनेक्टेड टू इट कि सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्शन डेवलप हो सके. जब हम लोग खुद स्टूडेंट्स थे तो आई रिमेम्बर कि हमारे उन सब्जेक्ट्स के ज़्यादा अच्छे स्कोर्स और उनकी लर्निंग बड़ी स्ट्रांग होती थी जब हमारे वो उन टीचर्स के साथ हमारे एक अच्छा से कनेक्शन, थोड़ा फ्रेंडली सा, जिनके साथ हम थोड़ा बॉन्ड कर सकते थे. उसके बरक्स अगर आप देखो कि वो जो टीचर्स बड़े अलूफ से रहते थे कि बस किताब उठाए आते थे, बिल्कुल ड्राई कोई बात नहीं की और यू नो वो चले गए, तो वो ना उनका सब्जेक्ट हमारा पढ़ने का दिल करता था ना उनसे हम कोई क्वेश्चंस करते थे. तो वो वाली चीज़ मैंने हमेशा चूंकि एज अ स्टूडेंट बहुत डीपली फील की थी, तो मैं सोचती होती थी कि मैं जब टीचर बनूंगी ना यू नो तो मैंने नहीं करना ऐसे. एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह I always try this. अब वो obviously किस हद तक होता है वो तो मेरे students ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर ये होती है कि to break the ice with them, ठीक है. और वो एक इस चीज़ में एज हमें obviously ये जो हमारी duties हैं as batch advisors and course advisors, तो वो चूँकि वो भी एक you know वो तो mandatory भी हो गया कि आपको बच्चों के साथ meetings करनी है, आपको उनसे पूछते रहना है if they are facing any issues. So I realize that this is really important. हम जो अब modern क्लासरूम के टीचर्स हैं वो सिर्फ टीचर्स नहीं है, वो सिर्फ फैसिलिटेटर्स नहीं है, वो उनके काउंसलर्स भी हैं. क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं एकेडमिक, उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रेड्स इस वजह से नहीं अफेक्ट हो रहे होते कि जी उन्होंने टेस्ट बुरा हो गया, मार्क्स अच्छे नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बिलीव यू मी कि बहुत ज़्यादा दिल एट टाइम्स ना हर्ट होता है ऐसे केसेस देखे कि ये छोटे छोटे ये टीनेजर्स ही हैं यू नो, और ये दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और बिल्कुल एडवांस स्टेजेस पे होते हैं, इतने इश्यूज होते हैं. सो वो चूंकि यू नो मॉडर्न दुनिया के मॉडर्न मसाइल भी हैं हमारी एज पे, यू नो वी नेवर न्यू कि डिप्रेशन भी कोई चीज होती है, ठीक है. तो लेकिन अब इट्स वेरी रियल क्योंकि द वर्ल्ड हैज चेंज सो रैपिडली, ठीक है, राइट. तो मुझे ये लगता है कि वी शुड बी माइंडफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स बीइंग टीचर्स. और मैं अपनी क्लासेस में एक छोटा सा सेशन रखती होती हूँ थॉट ऑफ द डे के नाम से क्लास के स्टार्ट में, या अगर जैसे डबल लेक्चर्स होते हैं तो आई ट्राई के मिडल में रख लें कि वो छोटी सी एक ब्रेक भी आ जाती है यू नो पढ़ाई से. तो उसमें मैंने बच्चों को ये कहती हूँ कि इफ़ देर इज़ एनीथिंग यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट अदर देन स्टडीज, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है. और अगर नहीं है तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि ओके आई एम गोइंग टू शेयर माई गोल्डन थॉट्स विद यू, ठीक है ना. तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि आई लिटरली टॉक टू देम अबाउट एनी थिंग दैट कम्स टू माई माइंड. फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया या फॉलोइंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली, या ये कि वो हम एक जो आपको पता है सोशल मीडिया पर कितनी फॉल्स परसेप्शन होती हैं कि जी बड़ी आइडिया लाइफ चल रही है. मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि यार प्लीज डोंट गेट योर सेल्फ डिसीव बाई दिस थिंग कि वो परफेक्ट स्किन है, परफेक्ट गाड़ी है, परफेक्ट यू नो लाइफ स्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं है. देन इवन यू नो जस्ट यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू देम अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग फाइनेंस. दिस वॉज माई सिक्स्थ सेमेस्टर एंड आई थॉट के दीज आर यू नो मैच्योर एंड एट सेमेस्टर से भी लाजमी आई टॉक अबाउट दिस कि यू आर गोइंग टू स्टेप इन टू प्रोफेशनल लाइफ ना हो तो आपको इन रियलिटीज ऑफ लाइफ का पता होना चाहिए. सो मुझे ये लगता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है स्टूडेंट्स को, कि आप उनके उनसे उनकी पढ़ाई के अलावा भी थोड़ी बहुत बातचीत करें ताकि बच्चे आपके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड फील करें एंड देन दे ओपन अप टू यू इफ़ दे हैव एनी इश्यूज. क्योंकि ऑब्वियसली हमारे वो वाली स्टेज गुजर चुकी है तो हम अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे उनको हेल्प आउट कर सकते हैं या फिर उनको सही डायरेक्शन में नाच कर सकते हैं.
1: बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि यू नो डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स द राइट, दैट्स वन ऑफ द एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट ड्यूटीज दैट वी हैव विद अस. हुमा, आप क्या कहेंगी इस बारे में?
3: मायमा, आई वुड से कि एक जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ फील करती हूँ और जिसमें मुझे बहुत अफसोस भी होता है, वो ये आजकल एक जो परसेप्शन बन गया है ना यूथ के बारे में, जैसे हम जेन जी कहते हैं तो जेन जी में हमारी एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन चुकी है. एम आई राइट?
1: बिल्कुल.
3: और जेन जी को अगर हम आज से 20 साल पहले अपने बारे में सोचें तो हम

0: coming towards the moral grooming of a student. Okay, जी, अब अगर if I talk about myself, तो I think मुझे अपने बचपन में किताबों में पढ़ी हुई कोई बात याद नहीं है, लेकिन मुझे जो मेरी टीचर्स ने बातें कही थी वो याद है.
1: कितनी खूबसूरत बात की है.
0: और मैंने कभी भी स्टूडेंट्स को ये कहते हुए नहीं सुना कि वो फलां किताब में ये बात लिखी हुई थी. हमारी टीचर ने हमें एक बात ये बताई थी और वो हमें आज तक याद है. सो बिलीव यू मी, एज अ टीचर हमारा एक बहुत अहम रोल है हमारी जो सोसाइटी में, हमारा एक बहुत अहम किरदार है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से निभाना है. सबसे पहले तो वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस बबल. वी नीड टू, हमें इस चीज़ को कबूल करने की ज़रूरत है कि ये हमारी यूथ है, ये हमारे ही बच्चे हैं, एंड वी हैव टू शेप देम. अब जिस स्टेज पे हम लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आकर अच्छाई और बुराई का तो उनको पता है. नाउ वी नीड टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स अ वर्ल्ड जो उनकी अपनी है, और उनकी अपनी दुनिया में रहते हुए उनको मॉरेलिटी की तरफ लेके आना है. दैट्स द मेन थिंग जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है. और ड्यूरिंग क्लासरूम आई सी मैनी स्टूडेंट्स, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके डिफरेंट चीज़ें हैं, और दे आर अनएबल टू फोकस, दे आर अनएबल टू स्पीक फॉर देम सेल्व्स इवन. उसके लिए हमें ड्यूरिंग क्लासरूम जस्ट कीप टेलिंग देम अबाउट मोरेलिटी, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दैट वी नीड टू टेल देम उनकी अपनी जो पोटेंशियल है उसके बारे में. व्हाट आर दे गुड एट, जस्ट नो देयर पोटेंशियल एंड देन टॉक अबाउट इट. दैट कैन बी आई थिंक द मेन थिंग. और एक चीज़ यहाँ पर आई वुड लाइक टू एड अ कोट ओवर हेयर. कोहली वंस सेड, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम. सो दिस इज बेसिकली लुकिंग ग्लास सेल्फ है. सोशल मीडिया के दौर में हमने प्रसीव अपने आप को वैसे ही किया हुआ है जैसा कि दुनिया हमें देख रही है. द रियल सेल्फ जो है, जो हमारी एक असल बीइंग है हमारे अंदर, आई थिंक इट हैज डेड समवेयर, इट हैज डाइड समवेयर. वी नीड टू वेक दैट अप फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन इट. वी नीड टू टेल आवर स्टूडेंट्स देयर ओन आइडेंटिटी एंड देन दे वर्क ऑन देम सेल्व्स. अब जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ, आई एम बॉर्न टू बी अ टीचर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई यूज टू, यू नो, टीच माई लिटिल ब्रदर. सो अब वेन आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई रियली वैल्यू इट. तो स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताएं, व्हाट इज योर पोटेंशियल, वर्क ऑन योर पोटेंशियल, एंड देन यू सी दैट द वर्ल्ड इज योर्स. दैट्स द मेन थिंग. एंड वी कैन डू इट बाय फॉर्मिंग यू नो इमोशनल कनेक्शन विद आवर स्टूडेंट्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट से.
1: That has been a wonderful, wonderful session and discussion with Aiba and Huma. Thank you so much for your valuable insights and time to talk about these current and relevant issues to today's world. And I hope that we could carry this essence in our classrooms as well, of counseling the students in the best of their shape and grooming them for a better tomorrow. Thank you so much. Aap sun rahe the UCP ki duniya FM 92.6, aur hum baat kar rahe the modern classroom aur is AI ke bare mein. Hum in future bhi we will try to bring up more content like this, and hum phir hazir honge aapke paas. Sunte rahiye UCP ki duniya FM 92.6. This is Umay Malone signing out. Take care.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
2: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 to life. Station of the nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया.